0: सर ये कौन है?
1: ये हमका करे साउलो को आदमी है, बीबी है, इंडिया से।
2: इट्स बीन 5 days. आई एम वेटिंग हियर फॉर माई फादर एंड मदर. दे आर माई वर्ल्ड. आई एम स्किपिंग माई स्कूल डेज. मैं अपने स्कूल को लीव करके यहाँ आई हूँ अपने मम्मी पापा को ढूंढने के लिए. भगवान से यही कृपा है. सभी को रिक्वेस्ट है, अगर इन दोनों को कहीं भी देखा है तो इस नंबर में प्लीज़ फ़ोन कीजिए. मैं अभी तक रो नहीं रही हूँ. मुझे पता है मेरे मम्मी पापा आएंगे, मुझे देखने के लिए आएंगे ये लोग. आपका भी कोई मिसिंग है? ये कौन है भाई साहब, कहाँ थे?
3: अपना ही भाई है उसका.
2: ये भी मिसिंग है? आपने आर्मी से बात की?
3: बात की है, कोई कांटेक्ट में नहीं है रे.
2: हंड्रेड्स ऑफ फोटोग्राफ्स दैट हैव बीन पुट अप हियर ऑफ दोज हु बीन मिसिंग. समवन और द अदर हैज कम हियर एंड पुट अप फोटोग्राफ.
4: As you see, viewers, the flood disaster has left behind scenes of devastation and desperation as well. Meanwhile, in Devighat, one of the worst hit areas along the Truli River, residents who fled for their lives, they're now returning to search through the wreckage of their own homes. Floodwaters rose several stories high, sweeping away entire homes and leaving an unknown number of people dead or missing. As the river began rising again, panic returned to the village, forcing residents to flee once more. Here's the report.

0: भगवान से यही कृपा है, सभी को रिक्वेस्ट है अगर इन दोनों को कहीं भी देखा है तो इस नंबर में प्लीज फोन कीजिए। मैं अभी तक रो नहीं रही हूँ, मुझे पता है मेरी मम्मी पापा आएंगे, मुझे देखने के लिए आएंगे ये लोग।
1: आपका भी कोई मिसिंग है? ये कौन है भाई साहब, कहाँ थे?
2: अपना ही भाई है उसका, तो
1: आ जाए। ये भी मिसिंग है? आपने आर्मी से बात की?
2: बात की है, कोई कांटेक्ट में नहीं है रे।
1: Hundreds of photographs that have been put up here of those who've been missing. Someone or the other has come here and put up photographs.
3: As you see, viewers, the flood disaster has left behind scenes of devastation and desperation as well. Meanwhile, in Devighat, one of the worst hit areas along the Truli River, residents who fled for their lives, they're now returning to search through the wreckage of their own homes. Floodwaters rose several stories high, sweeping away entire homes and leaving an unknown number of people dead or missing. As the river began rising again, panic returned to the village, forcing residents to flee once more. Here's the report.

0: मतलब नहीं आ रहा, नुकसान तो बहुत ही है। ट्रांसपोर्ट समझिए, हम लोग समझिए एक दो साल बहुत पीछे हो गए जिस हिसाब से ये हुआ है। तो अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पहले जो बेचारे जिनका ये फ्लड वगैरह जहाँ आया उनके लिए कुछ सोच के उसके बाद फिर गवर्नमेंट से हम अपने लिए बातचीत करेंगे कि थोड़ा बता हम लोगों को भी राहत मिले, जो EMI वगैरह जो देनी है बैंकों की ये इधर वगैरह के लिए थोड़ी बहुत हम लोगों को छूट मिले, ये मिले वो मिले करके, इसलिए हम लोग उसके पीछे बाद में करेंगे, पहले इन लोगों के लिए कुछ सोचें।
1: कितना बड़ा बिजनेस है ये ट्रांसपोर्ट का, अगर अमाउंट की बात करें, गाड़ियों की बात करें और लोगों की बात करें,
0: अगर सब मिला के अगर करोगे तो ये तो अरबों का हिसाब, अरबों में चले जाती है ये जो ये ट्रांसपोर्ट की लाइन है। तो लेकिन अब देखिए आप 5 दिन से रोड पूरी बंद की हुई है, हाईवे पूरा बंद है, तो इस गाड़ियाँ जिधर की हैं उधर ही खड़ी हैं लोड।
2: Let's now talk about Rasuwa, one of the worst hit districts in Nepal's devastating floods. What was once a bustling market is now buried under tons of mud, rock and debris. Roads and bridges, they've been wiped out entirely, while homes have disappeared. More than 500 shops in the main market have either been washed away or buried altogether. NDTV has travelled through some of the most devastated parts of Rasuwa, walking through treacherous terrain, just to bring you the scale of destruction on the ground. This is what the flood has left behind.
3: After a long night and heavy rains, well, this is the morning in Rasuwa. We are here like we have been reporting since last night. NDTV crew has reached Rasuwa, the first Indian media crew to reach here. And it has been a very long night for the locals here, and we'll try and speak to them. बहुत लगातार कल बारिश हुई है, क्या आपने आपको लग रहा था, क्योंकि बारिश हमने भी देखी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, आप कह रहे हैं कि इससे घबराहट भी हुई आप सभी लोगों को?
4: आज बिहान देखी 4:30 बजे देखी नहीं धेरै ठुलो आवाज।
3: We can just zoom in to the valley there. That was the Bhadravati Bazaar, the gateway to Nepal-Tibet border. This is the way the Mansarovar Yatris and the tourists used to proceed towards the Tibet border. And if you can see the small, tiny little buildings there, that's Nuwakot, you know. The river is flowing down that way. So ahead is Trishuli and Nuwakot. So that's the flow of the river. This is the Bhotakoshi river. We are just next to the river Bhotakoshi, which is flowing down from Tibet towards Nepal. The locals tell us here, before 26th, this was a very quiet, narrow river flowing quietly down the stream next to Rasuwa. But post flash floods, this river has widened. It's more fierce. The speed of the water is for you to see. This has also destructed the entire Vetravati Bazaar of Rasuwa. We'll go towards that side too. This, it seems, was a restaurant for the tourists, for the locals who wanted to come and have some a good time. Here we can see how the silt has submerged the entire kitchen of this building. You can see the silt inside the kitchen, the utensils and every little thing there is submerged in mud. Locals have been advised to keep away from this area. We would also be moving away now because we can't really spend a lot of time here. This is to show you the scale of destruction and devastation which Rasuwa has seen.
5: हम पहुंचे हैं इस वक्त दादुका जी के पास, जो उनका घर है यहाँ पर, ये बहुत करीब रहती थी पेत्रवती बाजार के, और अब वो घर दिखाएंगी। अब ये घर छोड़कर जा चुकी हैं और यहाँ रहती नहीं है, हमें यहाँ लेकर आई हैं। पेत्रवती जी दिखाइए, घर में कुछ नुकसान हुआ क्या, कुछ परेशानी हुई जब सैलाब आया, कुछ प्रॉब्लम हुई थी जब जिस दिन आया बाढ़ से गया नीचे गया, आपके घर में कुछ नहीं हुआ, तो फिर आप डरे क्यों, आपने घर क्यों छोड़ दिया? हिलता है घर?
6: हाँ,
5: दिखाइए कहाँ हिल रहा है, डर लग रहा है आपको?

0: dishes healthy every day.
1: A second changes everything. A minute moves a nation. An hour becomes history. For three decades, NDTV has been there. For the moments that were unstoppable, unmissable, unforgettable. Today, the moment is ours. NDTV 24/7 is now NDTV when it really matters.
2: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
3: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग चार लोगों के पास है
4: कुछ इससे भी अनोखा
3: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला
1: New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster. Bolder. More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV. When it really matters. Front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
5: So many attacks.
1: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits.
6: Welcome back, viewers. We're getting some disturbing news coming in from the national capital, where we're getting to learn a 3-year-old child was allegedly assaulted at a preschool in Northeast Delhi's Mochpur area. The matter came to light after the child complained of ear pain. A doctor reportedly found swollen eardrums, allegedly caused by assault. Now, the parents, they approached this preschool, but alleged the administration initially denied any abuse whatsoever. However, CCTV footage later showed that the child was allegedly tied to a chair and beaten by a teacher and a nanny. The parents then, well, they approached Delhi police, which registered a case under the POCSO Act. We advise viewer discretion. The visuals are really disturbing here. The accused nanny, meanwhile, has been arrested while cops are investigating the teacher's role. Meanwhile, let's just listen into what the father of this child who's been assaulted had to say.
7: हमने 18 तारीख की फुटेज निकाली 18 तारीख की फुटेज 17 की और 16 की उन तीनों दिन इसको तीनों दिन एप्रेन से बांधा गया तीन तीन घंटे के लिए और कंटिन्यूस की पिटाई लगाई गई है मतलब एप्रेन से बंद बंद के भी आगे आ रहा है कि मेरे को कोई खोल दो भग भग के आगे आ रहा है फुटेज में सब में आया आ रही है इसने आया के लात करी ऐसे कि मुझे खोल दो आया ने मार के फिर पीछे बिठा दिया फिर इसकी क्लास टीचर आती है इसने उससे बोला खोल दो ये इसको फिर पीछे बिठा दिया मार के ये फिर कुछ हिम्मत करके आगे आता टेबल तक टेबल पे लात मार रहा है कल को भाई अटैक पड़ जाए कुछ दिक्कत हो रही हो उसके पानी मांग रहा हो भूख लग रही हो वो फड़फड़ आ रहा है उसमें फिर चाटे मार के फिर पीछे बिठा दिया उसमें मुक्के मारे आया ने टीचर ने कान खींचा फिर मारा बिठा दिया कोने में फिर मैंने
8: सीसीटीवी फुटेज में जो सारी चीज़ें हुई वो सब कैद हैं
7: सब कुछ कैद है मैं आपको जितना बता रहा हूँ मैं भी वही बता रहा हूँ जो मैंने देखा है
8: कितने घंटे के लिए बच्चे को आप प्ले स्कूल में छोड़कर आते थे
7: 3.5 घंटे के लिए उसके बाद फिर मैंने दूसरी फुटेज देखी उसमें भी एप्रेन से बांध दिया इसको फुसला फुसला के फिर क्या ये बच्चे से शेयर कर रहा खाना तो कान पकड़ा खींच के फिर मार दिया जैसे बीच में टेबल पर बैठा हुआ बच्चा तो आई टीचर लात से कोने में फेंक दिया लात से फेंकने के बाद फिर चाटे मारे फिर दूसरी फुटेज देखी तो बेचारा कोने में आराम से डर के बैठा रखा है परमानेंट हर वीडियो में डर के चुप बैठा रहता
6: है अनुष्का जॉइंस अस फॉर मोर ऑन दिस अनुष्का डिस्टर्बिंग विजुअल्स देयर व्हाट एक्शन इज बीइंग टेकन एंड व्हाट मोर कैन यू टेल अस अबाउट दिस डिस्टर्बिंग इंसिडेंट टू से द लीस्ट
9: Well, that's right. A shocking incident coming from Northeast Delhi's Mochpur area, where in a play school, a child was beaten. The incident came to light when the child complained of ear pain, after which the parents took him to the hospital, wherein doctors

0: is now NDTV, when it really matters.
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज.

0: Bhadravati Bazaar, the gateway to Nepal-Tibet border. This is the way the Mansarovar Yatris and the tourists used to proceed towards the Tibet border. And if you can see the small, tiny little buildings there, that's Nuwakot, you know. The river is flowing down that way. So ahead is Trishuli and Nuwakot. So that's the flow of the river. This is the Bhotakoshi river. We are just next to the river Bhotakoshi, which is flowing down from Tibet towards Nepal. The locals tell us here, before 26th, this was a very quiet, narrow river flowing quietly down the stream next to Rasua. But post flash floods, this river has widened. It's more fierce. The speed of the water is for you to see. This has also destructed the entire Vetravati Bazaar of Rasua. We'll go towards that side too. This, it seems, was a restaurant for the tourists, for the locals who wanted to come and have some a good time. Here we can see how the silt has submerged the entire kitchen of this building. You can see the silt inside the kitchen, the utensils and every little thing there is submerged in mud. Locals have been advised to keep away from this area. We would also be moving away now because we can't really spend a lot of time here. This is to show you the scale of destruction and devastation which Rasua has seen.
1: हम पहुंचे हैं इस वक्त दादुका जी के पास, जो उनका घर है यहाँ पर. ये बहुत करीब रहती थी वेत्रावती बाजार के, और अब वो घर दिखाएंगी. अब ये घर छोड़कर जा चुकी हैं और यहाँ रहती नहीं है. हमें यहाँ लेकर आई हैं वेत्रावती जी. दिखाइए घर में कुछ नुकसान हुआ क्या, कुछ परेशानी हुई जब सैलाब आया? कुछ प्रॉब्लम हुई थी जब, जिस दिन आया बाढ़? नीचे गया. आपके घर में कुछ नहीं हुआ तो फिर आप डरे क्यों हैं? आपने घर क्यों छोड़ दिया?
2: एक परिवार आउँदा घर अहिले नै
1: हिलता है. घर
2: घर अहिले रहेको छ.
1: क्यों हिल रहा है? दिखाइए कहाँ हिल रहा है. डर लग रहा है आपको? दरवाजा हिलता रहता है. बस्ती में कोई नहीं,
2: परिवार
1: मात्र है. जिस दिन बाढ़ आया, सैलाब आया, आप यहाँ थे?
2: आप यहाँ थे. पानी माथी माथी
1: ऊपर भागे
2: भागे तला तला नीचे नीचे अंत तक घर और सब आएगा.
0: वी आर एट द बेसिक लेवल स्कूल in Rasua. This school has actually become now a shelter home for children. Behind me are children. It's their lunch time. They're having their food, and we've been told that around 100 children have been rescued from the flash floods. Some have lost their parents. Some parents are still missing. They're waiting to hear about them.
3: दुख की बात है, साथ में था वो दोस्त लोग, सब चला गया और वैसे हो रहा है, घबरा रहा है. कल क्या देखा था और कल क्या होगा वो भी पता नहीं, ऐसे पेट रहा हूँ.
0: घर बार सब कुछ तबाह हो चुका है.
3: परेशान वो भाई बहन के बहुत याद आता है. और मैं कितने वो 12 तारीख में फ्लाइट होना था मलेशिया में, वो सुपरमार्केट में, उसके लिए पैसे बगैर सब कुछ ऋण लेके रखा था, वो भी चला गया.
0: एनडीटीवी इज ब्रिंगिंग यू अनदर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट फ्रॉम श्यापुर. वी हैव रीच्ड द लास्ट पॉइंट ऑफ नेपाल. बियॉन्ड दिस इज नेपाल चाइना बॉर्डर. राइट बिहाइंड मी इज श्यापुर. वी कैन जस्ट जूम इन एंड शो यू, दैट्स द श्यापुर मार्केट प्लेस विच वॉज बजिंग विथ एक्टिविटी टिल 26th August. बियॉन्ड दैट इज तिमोर बाजार, विच वॉज द लास्ट सेटलमेंट of Nepal, which has been now completely devastated. A massive avalanche and glacier collapse has destructed, devastated everything around this area. And these are the first pictures coming out from the border. The damage, the flood completely overwhelmed Timur Bazaar, burying houses, markets, vehicles. The rescue operations are still on, but These are the

0: submission process when she and her mother were in the headmistress's room. Reportedly, the student's mother, with folded hands, was seen before the headmistress. The student reportedly asked her mother not to fold her hands, and the headmistress allegedly reacted by using a caste slur against the teenager. Police have now booked the headmistress under the SCST Act. That's the latest we're tracking in this case. For now, let's turn our attention to the other big story we're tracking as well. All right, a Supreme Court judge has made strong observations on the right of students to question and express dissent. Justice Ujjwal Bhuyan has said that in a democracy, right to question is not an act of defiance. He added that the right to question is an essential expression of citizenship, of liberty and constitutional responsibility. He also said students cannot be threatened with punitive action for expressing a different point of view. These remarks come amid the ongoing student protest campaign by the Korkro Janata Party. And as CJP leader Ashutosh Ranka has said, that the government cannot silence students and should listen to the genuine demands of students. In fact, Mr. Ranka has also warned that any intimidation could further intensify the student movement.
1: In a democracy, the right to question is not an act of defiance. It is an essential expression of citizenship, liberty, and constitutional responsibility. So when students express a different point of view, when students ask questions, they cannot be threatened. They cannot be threatened with punitive action. That is unconstitutional. That is misuse of power and office.
2: देखिए आप अगर आपको लग रहा है कि आप अपने जो है डराने धमकाने से हिंसा फैलाने से मारपीट करने से लोगों की आवाज़ को दबा सकते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। जंतर मंतर से कुछ तो सरकारों को प्रशासन को इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन को सीखना चाहिए। जेन्युइन इश्यूज़ हैं बच्चों के, IIT दिल्ली में भी जो हुआ बहुत ही जेन्युइन इश्यूज़ हैं। मैं तो खुद IIT से हूँ, मैंने देखा है किस तरह के इश्यूज़ आते हैं। अगर आप उनको एड्रेस नहीं करेंगे तो बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे, बच्चे प्रदर्शन करेंगे, ये उनका संवैधानिक अधिकार है और आपका कर्तव्य बनता है कि आप बच्चों की मांगों को सुने और उन्हें एड्रेस करें।
3: जस्टिस उज्जवल भी जैसे छात्रों का ही समर्थन कर रहे थे इस टाइम कि उन्होंने बोल रहे थे कि छात्रों को धमका नहीं सकते आप, उनकी बात सुननी चाहिए।
2: बिल्कुल सुननी चाहिए, सरकारों के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप डराएंगे धमकाएंगे उससे बच्चे चुप हो जाएंगे तो आंदोलन को आप और बढ़ाएंगे। आप जंतर मंतर पर देखिए कि आपकी हरकतों से वो आंदोलन कितना बड़ा हो गया। आप अगर उसी तरह चीज़ें करते रहेंगे, आपका दिमाग लोगों को डराने धमकाने में, आंदोलनों को खराब करने में, हिंसा फैलाने में रहेगा तो ये आंदोलन और बड़े होंगे।
0: As always, we continue to track the latest news and updates for you. We're slipping into a very quick break. Back in a moment.

0: क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर्थर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: Sauluko Admi, BBA.
1: So,
0: Indese.
2: It's been 5 days. I'm waiting here for my father and mother. They are my world. I'm skipping my school days. मैं अपने स्कूल को लीव करके यहाँ आई हूँ अपने मम्मी पापा को ढूंढने के लिए. भगवान से यही कृपा है. सभी को रिक्वेस्ट है, अगर इन दोनों को कहीं भी देखा है तो इस नंबर में प्लीज़ फ़ोन कीजिए. मैं अभी तक रो नहीं रही हूँ. मुझे पता है मेरे मम्मी पापा आएंगे, मुझे देखने के लिए आएंगे ये लोग.
1: आपका भी कोई मिसिंग है? ये कौन है भाई साहब, कहाँ थे?
3: अपना ही भाई है उसका. तो हाँ जी,
1: ये भी मिसिंग है? आपने आर्मी से बात की?
3: बात की है, कोई कांटेक्ट में नहीं है रे.
1: Hundreds of photographs that have been put up here of those who've been missing. Someone or the other has come here and put up photographs.
4: Till now it's fifth day. Today is Sunday, and we have received 56 patients in our hospital. And out of those, one patient we couldn't save him. Other people are recovering. Three patients are in the ICU, and we are still receiving patients. Yesterday evening we received one small kid after she was rescued after 70 hours of the incident, and she was mud drowned and had multiple injuries. So on top of that, the other thing is we have also received around 59 deceased bodies, and out of those 8 bodies we could identify and manage accordingly.
1: The transport industry in the entire country of Nepal has been huge, running to a tune of around 1 lakh vehicles, which includes tankers, special vehicles, and even a lot of small and big vehicles that are utilized for ferrying essentials across the country. But even that has taken a major hit, with thousands of trucks and tankers stuck almost everywhere. To talk more on this, I have with me Harpal Singh, who's been into the business. And give us an idea, sir, कितनी बड़ी ये त्रासदी है और आप लोगों के लिए भी कितना नुकसान हुआ है?
5: अभी तो फिलहाल तो देखिए ऐसे है कि नुकसान की बात तो अभी करके कोई मतलब नहीं आ रहा. नुकसान तो बहुत ही है. ट्रांसपोर्ट समझिए, हम लोग समझिए 1-2 साल बहुत पीछे हो गए जिस हिसाब से ये हुआ है. तो अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पहले जो बेचारे जिनका ये फ्लड वगैरह जहाँ आया उनके लिए कुछ सोच के उसके बाद फिर गवर्नमेंट से हम अपने लिए बातचीत करेंगे कि थोड़ा बता हम लोगों को भी राहत मिले, जो EMI वगैरह जो देनी है बैंकों की, ये इधर वगैरह के लिए थोड़ी बहुत हम लोगों को छूट मिले, ये मिले वो मिले करके. इसलिए हम लोग उसके पीछे बाद में करेंगे, पहले इन लोगों के लिए कुछ सोचें.
1: कितना बड़ा बिजनेस है ये ट्रांसपोर्ट का, अगर अमाउंट की बात करें, गाड़ियों की बात करें और लोगों की बात करें,
5: अगर सब मिला के अगर करोगे तो ये तो अरबों का हिसाब, अरबों में चले जाती है ये जो ये ट्रांसपोर्ट की लाइन है. तो लेकिन अब देखिए आप 5 दिन से रोड पूरी बंद की हुई है, हाईवे पूरा बंद है, तो इस गाड़ियाँ जिधर की हैं उधर ही खड़ी हैं लोड.
6: The death toll from flash floods in Nepal has risen to 781, with more bodies being recovered.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
2: रियली
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.
3: Hindustan mile, Hindustan se.
4: Desh ka tire, JK tire.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है। ब्लेंडर स्प्राइट पैकेज ड्रिंकिंग वाटर द वन एंड ओनली।
1: हेल्थ प्रॉब्लम्स डोंट ऑलवेज कम विद अ वार्निंग एंड व्हेन दे डू The concern for a family is often as much about the treatment cost as the illness itself. For teachers and school staff in Uttar Pradesh, that financial worry is now getting a safety net.
2: कैशलेस चिकित्सा योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के लिए बहुत अच्छा उपहार दिया है। 5 लाख तक की भी यदि राहत आदमी को मिल जाती है तो वो भी अपने आप में कोई छोटी रकम नहीं है।
1: Under the मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना अराउंड 12 लाख टीचर्स शिक्षा मित्र इंस्ट्रक्टर्स कुक्स School staff and their families are covered. This includes teaching and non-teaching staff of basic and secondary schools and Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas. With up to 5 lakh rupees in cashless treatment at empaneled hospitals, beneficiaries can access care without worrying about upfront.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर्थर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, everyday.

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
1: He has tracked the pulse of power from Washington to Kota.

0: lot of people who are walking up to hospitals to ensure that those missing in their families or relatives are getting registered by name here. I have someone. आपके कितने लोग मिसिंग हैं यहाँ पर? आप यहाँ जो नाम लिखवाए हैं मिसिंग लिस्ट?
1: मेरे को भी यकीन नहीं है कि इतने आदमी है, लेकिन बहुत है, बहुत है।
0: A lot of people have come at the hospitals here, and I'm at the Tribhuvan University Hospital and Training Center, where these people and the teaching hospital has been one of those centers where people are walking it continuously to get the names of those missing registered, or even contact them who have their names registered already. Sir, ये कौन है?
2: ये हमका करे साउलो को आदमी है, बीबी है,
0: सो
2: इंडिया से।
3: It's been 5 days. I'm waiting here for my father and mother. They are my world. I'm skipping my school days. मैं अपने स्कूल को लीव करके यहाँ आई हूँ अपने मम्मी पापा को ढूंढने के लिए। भगवान से यही कृपा है। सभी को रिक्वेस्ट है, अगर इन दोनों को कहीं भी देखा है तो इस नंबर में प्लीज़ फ़ोन कीजिए। मैं अभी तक रो नहीं रही हूँ। मुझे पता है मेरे मम्मी पापा आएंगे, मुझे देखने के लिए आएंगे ये लोग।
0: आपका भी कोई मिसिंग है? ये कौन है भाई साहब, कहाँ?
4: अपना ही भाई है वो तो।
0: ये भी मिसिंग है? आपने आर्मी से बात की?
4: बात की है, कोई कांटेक्ट में नहीं है रे।
0: हंड्रेड्स ऑफ फोटोग्राफ्स दैट हैव बीन पुट अप हियर ऑफ दोज हु हैव बीन मिसिंग, समवन और द अदर हैज कम हियर एंड पुट अप फोटोग्राफ।
5: टिल नाउ इट्स फिफ्थ डे, टुडे इज संडे, एंड वी हैव रिसीव्ड 56 पेशेंट्स इन आवर हॉस्पिटल, एंड आउट ऑफ दोज वन पेशेंट वी कुडंट सेव हिम, अदर पीपल आर रिकवरिंग, 3 पेशेंट्स आर इन द आईसीयू, एंड we are still receiving patients. Yesterday evening we received one small kid after she was rescued after 70 hours of the incident, and she was mud drowned and had multiple injuries. So on top of that, the other thing is we have also received around 59 deceased bodies, and out of those 8 bodies we could identify and manage accordingly.
0: The transport industry in the entire country of Nepal has been huge, running to a tune of around 1 lakh vehicles, which includes tankers, special vehicles, and even a lot of small and big vehicles that are utilized for ferrying essentials across the country. But even that has taken a major hit, with thousands of trucks and tankers stuck almost everywhere. To talk more on this, I have with me Harpal Singh, who's been into the business, and give us an idea, sir, कितनी बड़ी ये त्रासदी है और आप लोगों के लिए भी कितना नुकसान हुआ है?
6: अभी तो फिलहाल तो देखिए ऐसे है कि नुकसान की बात तो अभी करके कोई मतलब नहीं आ रहा, नुकसान तो बहुत ही है। ट्रांसपोर्ट समझिए, हम लोग समझिए एक दो साल बहुत पीछे हो गए जिस हिसाब से ये हुआ है। तो अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पहले जो बेचारे जिनका ये फ्लड वगैरह जहाँ आया उनके लिए कुछ सोच के उसके बाद फिर गवर्नमेंट से हम अपने लिए बातचीत करेंगे कि थोड़ा बहुत हम लोगों को भी राहत मिले, जो EMI वगैरह जो देनी है बैंकों की, ये इधर वगैरह के लिए थोड़ी बहुत हम लोगों को छूट मिले, ये मिले वो मिले करके, इसलिए हम लोग उसके पीछे बाद में करेंगे, पहले इन लोगों के लिए कुछ सोचें।
0: कितना बड़ा बिजनेस है ये ट्रांसपोर्ट का, अगर अमाउंट की बात करें, गाड़ियों की बात करें और लोगों की बात करें,
6: अगर सब मिला के अगर करोगे तो ये तो अरबों का हिसाब, अरबों में चले जाती है ये जो ये ट्रांसपोर्ट की लाइन है। तो लेकिन अब देखिए आप 5 दिन से रोड पूरी बंद की हुई है, हाईवे पूरा बंद है, तो इस गाड़ियाँ जिधर की हैं उधर ही खड़ी हैं लोड।
7: Alright, let's now turn our attention to Rasuwa district, one of the worst hit districts in Nepal's devastating floods. Let me just paint a picture for you. What was once a bustling market is now buried under tons of mud, tons of rocks, debris. Roads and bridges there have been wiped out. Homes have disappeared. More than 500 shops in that main market area, they have either been washed away or buried. Prime Minister Balendra Shah has now said Nepal is facing an unimaginable and heartbreaking disaster, with authorities struggling to assess the full scale of this devastation. But NDTV has travelled through some of the most devastated parts of Rasuwa district, walking through treacherous terrain to bring you the scale of destruction on the ground and the human impact of this tragedy. Take a look at what the flood has left behind.
8: After a long night and heavy rains, well, this is the morning in Rasuwa. We are here like we have been reporting since last night. NDTV crew has reached Rasuwa, the first Indian media crew to reach here. And it has been a very long night for the locals here. And we'll try and speak to them. Bahut lagatar kal barish hui hai. क्या आपने आपको लग रहा था क्योंकि बारिश हमने भी देखी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था आप कह रहे हैं कि इससे घबराहट भी हुई आप सभी लोगों को
9: आज आज बिहान देखि 4:30 बजे देखि नै धेरै ठुलो आवाज
8: वी कैन जस्ट जूम इन टू द वैली देयर That was Bhadravati Bazaar, the gateway to Nepal-Tibet border. This is the way the Mansarovar Yatris and the tourists used to proceed towards the Tibet border. And if you can see the small, tiny little buildings there, that's Nuwakot, you know. The river is flowing down that way. So ahead is Trishuli and Nuwakot. So that's the flow of the river. This is the Bhotakoshi river. We are just next to the river Bhotakoshi, which is flowing down from Tibet towards Nepal. The locals tell us here, before 26th, this was a very quiet, narrow river flowing quietly down the stream next to Rasuwa. But post flash floods, this river has widened. It's more fierce. The speed of the water is for you to see.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: वीडियो भी नहीं देख पाओगे उसकी।
1: क्लास टीचर और स्टाफ और कौन था जो मार रहा था आपके बेटे को?
0: क्लास टीचर और स्टाफ, मैम जो मार रहे थे वो आयतिन की केयर टेकर और इनकी क्लास टीचर थी।
1: सर स्कूल का कहना है कि आरोपी टीचर को डिसमिस कर दिया गया है और वो पुलिस जांच भी पूरी कर रही है, सहयोग कर रही है, पॉक्सो पे केस का एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन स्कूल ने क्या जिम्मेदारी ली है अभी तक? आपने जब सीसीटीवी फुटेज देखा था उसके बाद आपने कोई जिम्मेदारी बात की थी, उन्होंने क्या बोला था?
0: मैम आपको सारी चीजें बताता हूँ ना अभी, क्यों मैम जब 17 तारीख को मैंने फुटेज देखी ना अपने बेटे की, तो 17 को भी उसको गंदी तरह वो टॉर्चर करके मार रहे हैं, साइड में बिठा दिया, कभी लात से मारा है, लात से साइड फेंक दिया कुर्सी से, मतलब इतनी गंदी तरीके से उसकी पिटाई लगाई जा रही है। फिर हमने मैम, मेरी वाइफ ने, उनकी क्लास जो ऑनर थी इनकी संगीता बंसल, उनको फ़ोन करा गया कि मेरे बेटे के साथ ऐसे हो रहा है, उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, उसने बोला कि नहीं तुम्हारा बच्चा गलत है, तो उसने बोला कि बच्चा गलत है, कोई बच्चा कोई शैतानी करेगा तो तुम उसे बांध के मारोगे,
1: साल का बच्चा गलत है किसी भी फुटेज में मेरा बच्चा नहीं, शैतानी उन्होंने उसे मारा था।
0: उसके उसकी टीचर ठीक है और उसकी टीचर उसके लिए ठीक है, उनका स्टाफ उनके लिए बिल्कुल ठीक है, हमारा बच्चा उनके लिए गलत था, उनके ये वर्डिंग थी मेरे लिए। मैम एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको
1: जी,
0: मेरे बच्चे के साथ 15-20 दिन से मैम वो पॉटी तक साफ नहीं करा रहा, वो वॉशरूम तक नहीं जा रहा, अब मुझे नहीं पता उसके बाद वॉशरूम में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वो मैम इतना परेशान हो चुका है और हम भी इतने परेशान हैं उसको लेके, मैम मैं बता नहीं पा सकता आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है उसके साथ, वो अब ऐसा हो चुका है, इतना डर चुका है कि अगर हम उससे 1, 2, 3, ABCD भी बुलवाते हैं ना तो अपने दोनों, अगर थोड़ा भूल जाता तो दोनों हाथ आगे कर लेता है, कान पे लगा लेता है कि अभी मेरे को मारेंगे, वो हमसे भी इतना डरा पड़ा है कि मैं कुछ गलती करूँगा तो सब लोग मुझे मारेंगे, वो इतना ट्रॉमा में जा चुका है मैम।
2: Well, as always, the news and updates continue right here on the NDTV network. We're slipping into a very quick break. Back in a moment with the latest updates for you.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: हाउ?
1: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
2: इट्स द माही वे।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: एप्रन से, वो अपने आप को हाथ तो उसके खोल रखे थे एप्रन से, पीछे उसको बांध रखा था। जब वो चल चल के कुर्सी से आगे आ रहा है चेयर से, और मैम लड़फड़ा रहा है कि मुझे खोल दो, तो मैम आया आती है केयर टेकर वहाँ से, वो उसको मारती है गंदी तरीके से। फिर वो दोबारा भगता है कि वो फिर बोलता है किसी टीचर से कि मेरे को खोल दो, निकलास टीचर से, वो फिर उसको मार के साइड में बिठा देती है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपना एप्रन गलती से खोल लेता है, उसको फोल्ड करके रख देता है, उसे फिर फेंक के मारता है। थोड़ी देर में क्लास टीचर फिर आती है, उसको प्यार में उलझा के, फुटेज है मैम इसकी सब कुछ क्लियर, उसको फिर एप्रन से बांध देती है। वो मैम फिर कोशिश करता है भागने की कि मेरे को कोई खोल दो, कोई खोल दो। उसके बाद वो एप्रन से अकेला बंधा हुआ है, और ना क्लास टीचर रूम में और ना आया रूम में। वो बहुत देर तक आगे स्टूल के पास तक वो गया है, टेबल के पास तक, उसके पास बहुत देर वो बेचारा कभी लात मार रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। उसके बाद पीछे से आया, फिर से आती है, फिर उसको मारती है कंटिन्यू, और इतने गंदे तरीके से मारती है मैम, आप वीडियो भी नहीं देख पाओगे
1: तो
0: उसकी। फिर
1: क्लास
0: मैम
1: टीचर
0: मैंने
1: और
0: 17 तारीख की
1: स्टाफ,
0: फुटेज
1: और कौन
0: निकाली।
1: था जो मार रहा था आपके बेटे को?
0: क्लास टीचर और स्टाफ मैम जो मार रहे थे वो आया थी, इनकी केयर टेकर और इनकी क्लास टीचर थी
1: सर, स्कूल का
0: मैम। फिर
1: कहना
0: उसके
1: है कि
0: बाद मैंने सत्रह
1: आरोपी
0: तारीख की
1: टीचर
0: फुटेज
1: को
0: निकाली
1: डिसमिस
0: उसमें
1: कर
0: से,
1: दिया
0: मेरी वाइफ
1: गया
0: ने।
1: है, और वो पुलिस जांच भी पूरी कर रही है, सहयोग कर रही है, पॉक्सो पे केस का FIR दर्ज हुआ है, लेकिन स्कूल ने क्या जिम्मेदारी ली है अभी तक? आपने जब
0: मैम तीन
1: CCTV
0: से चार
1: फुटेज
0: दिन हो
1: देखा
0: गए
1: था,
0: मैम,
1: उसके
0: स्कूल
1: बाद
0: ने
1: आपने
0: कोई
1: स्कूल से
0: जिम्मेदारी नहीं
1: बात
0: ली अभी
1: की
0: तक।
1: थी, उन्होंने क्या बोला था?
0: मैम आपको सारी चीज़ें भी बताता हूँ ना अभी, कि मैम जब 17 तारीख को मैंने फुटेज देखी ना अपने बेटे की, तो 17 को भी उसको गंदी तरह वो टॉर्चर करके मार रहे हैं, साइड में बिठा दिया, कभी लात से मारा है, लात से साइड फेंक दिया कुर्सी से, मतलब इतनी गंदी तरीके से उसकी पिटाई लगाई जा रही है। फिर हमने मैम मेरी वाइफ ने उनकी क्लास जो ऑनर थी इनकी संगीता बंसल, उनको फ़ोन करा गया कि मेरे बेटे के साथ ऐसे हो रहा है, उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, उसने बोला कि नहीं तुम्हारा बच्चा गलत है, तो उसने बोला कि बच्चा गलत है, कोई बच्चा कोई शैतानी करेगा तो तुम उसे बांध के
1: 3 साल
0: मारोगे,
1: का बच्चा
0: और मैम
1: गलत
0: किसी भी
1: है और
0: फुटेज में मेरा
1: उसके
0: बच्चा
1: लिए
0: कहीं शैतानी
1: उन्होंने
0: करता भी
1: उसे
0: नहीं है।
1: मारा था।
0: उसके उसकी टीचर ठीक है, और उसकी टीचर उसके लिए ठीक है, उनका स्टाफ उनके लिए बिल्कुल ठीक है, हमारा बच्चा उनके लिए गलत था, उनके ये वर्डिंग थी मेरे लिए। मैम एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको,
1: जी
0: मेरे बच्चे के साथ 15-20 दिन से मैम वो पॉटी तक साफ़ नहीं करा रहा, वो वॉशरूम तक नहीं जा रहा। अब मुझे नहीं पता उसके बाद वॉशरूम में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वो मैम इतना परेशान हो चुका है और हम भी इतने परेशान हैं उसको लेके, मैम मैं बता नहीं पा सकता आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है उसके साथ। वो अब ऐसा हो चुका है, इतना डर चुका है कि अगर हम उससे 1 2 3 ABCD भी बुलवाते हैं ना, तो अपने दोनों अगर थोड़ा भूल जाता तो दोनों हाथ आगे कर लेता है, कान पर लगा लेता है कि अभी मेरे को मारेंगे। वो हमसे भी इतना डरा पड़ा है कि मैं कुछ गलती करूँगा तो सब लोग मुझे मारेंगे, वो इतना ट्रॉमा में जा चुका है मैम।
2: Shifting focus, viewers, an 8-year-old boy, Ansh, was crushed to death after a speeding Innova allegedly ran him over in Mumbai's Porsche Bandra area. Cops say the vehicle was being driven by a 44-year-old nutritionist, Megha Rawal, who was allegedly on her mobile phone at the time of the crash. Following the incident, Rawal was arrested and booked under culpable homicide charges. The victim's family, meanwhile, has demanded strict action, alleging negligence led to the child's death, led to 8-year-old Ansh's death. The tragic accident has sparked outrage, and rightly so, with locals calling for tougher enforcement against reckless driving. Meanwhile, I'm joined by Ansh's parents, grieving parents, Ravindra Gupta and Poonam Gupta. कि सबसे पहले इस बेहद दुखद घड़ी में हमारी पूरी NDTV की पूरी टीम आपके और आपके परिवार के साथ खड़ी है। हम आपके प्यारे बेटे अंश के लिए तहे दिल से गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे, मैं कुछ भी पूछूं उससे पहले ये है कि कल अंश का 9वां जन्मदिन होने वाला था, आप लोग इसे कैसे मनाने वाले थे, और अब बिना अंश के कल का उस दिन का सामना आप कैसे करेंगे? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि कल अंश का 9वां जन्मदिन था, रविंदर जी, पूनम जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
3: हाँ सर, आवाज़ आ रही है।
2: रविंदर जी, पहले तो मैं अपने तहे दिल से शोक व्यक्त करता हूँ, मैं और मेरी पूरी NDTV की टीम आपके बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के आपके साथ है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा रविंदर जी कि कल अंश का 9वां जन्मदिन मनने वाला था, आप लोग इसे कैसे मनाने वाले थे, और अब बिना अंश के कि कल का दिन का सामना आप कैसे करेंगे?

0: कैसे हम करेंगे, बहुत बड़े दुख है उसको, मेरे बेटे को अन्याय चाहिए, अब क्या करूँ सर, मेरे बेटे को अन्याय चाहिए।
1: रविंदर जी, आपको इस हादसे के बारे में

0: मैं ओली फैमिली के पास गया तो मेरा बच्चे को लोग बोलता है कि तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, और कुछ लोग एक्सीडेंट हो गया था और लोग बाकी बोलो था तुम्हारे बच्चे तो साइड में खड़ा था, तुम्हारे बच्चे कोई गलती नहीं है। वो लेडीज जो कि गाड़ी जो कि लेके आगे ठोक दिया बच्चे को, बच्चा एक बार गिरा फिर वापस खड़ा हुआ, फिर वापस उसने गाड़ी चलाई, वो मोबाइल से बात कर रही थी मैडम जो चला रही थी गाड़ी। और मैं ये चाहूँगा कि सरकार से कि मेरा जो कि अन्याय हमको मिले, हमारे बच्चे को जो कि सब अन्याय हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे बच्चे को। मेरा हाथ जो पकना है मुझे।
1: पूनम जी से भी मैं सवाल पूछना चाहूँगा। पूनम जी, आज ये सब होने के बाद आज आपके लिए न्याय का असली मतलब क्या होगा? आप क्या दरख्वास्त करना चाहते हैं अथॉरिटीज से, सरकार से, कि अब इस केस में क्या किया जाए? रविंदर जी, अगर आप जवाब दे सके तो।
2: मेरी एक ही औलाद था, मेरा लाल कल बर्थडे था, मेरे लाल का बर्थडे था, मेरा एक ही लाल है, मेरे लाल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कल मेरा लाल का बर्थडे है, कल मेरा लाल का बर्थडे, मेरे न्याल चाहिए, मेरे को न्याल चाहिए, मेरा एक ही लाल था, मेरे को एक ही लाल था। अरे भगवान देव दही बजे तो के कहले होती चनकेश कहीं गदनवा में जा मन लाल बच गया होते हो।
1: रविंदर जी,
2: हम ना तो के भेजनी हो चनकेश
1: रविंदर जी, अब आपकी कोर्ट और प्रशासन से क्या क्या मांग है इस त्रस्ती के बाद? मैं समझ सकता हूँ आप लोग बहुत बहुत ही ज़्यादा टूटे दिल की अवस्था में हैं अभी।
0: मेरा सर यह मांग है कि मेरा यह मांग है सर कि मेरा एक ही औलाद था और वो भी चला गया मेरा औलाद। अब मैं उसके लिए चाहता हूँ कि अन्याय मिले और जो किया उसको कड़ी कड़ी सजा मिले उसको, और सब सरकार से मेरी भी यही गुंजाइश है कि बच्चे के लिए मेरे अन्याय मिले, इंसाफ चाहिए मेरा मेरे बच्चे को, और मेरी एक ही औलाद था।
1: बिल्कुल रविंदर जी, एक मुझे आपसे सवाल और करना है रविंदर जी, कि ये जो जो घटना हुई, आपको इस घटना के बारे में इतला किसने करी और आपको क्या इतला हुई कि ड्राइवर ने गाड़ी अपने आप रोक ली या ड्राइवर का घिराव हुआ तब उसे गाड़ी रोकनी पड़ी? आपके सुनने में क्या आया रविंदर जी? सबसे पहले
0: सर वहाँ पे जो पब्लिक लोग सर था वहाँ पे लोग देखा, वो पब्लिक लोग देखा बच्चे के जो कि इन्होंने एक बार की धक्का मारा तो बच्चा गिरा तो वापस खड़ा हुआ, फिर दोबारा उन्होंने बच्चे के ऊपर चढ़ाया गाड़ी, तो गाड़ी चला करके भागने जा रहे थे और फ़ोन से बात भी कर रहे थे, पब्लिक लोग घेरा उसको, गाड़ी को घेर के उसको रोका, उसको फिर पुलिस के हवाले किया लोग।
1: गाड़ी भागने की कोशिश भगाने की कोशिश कर रहे थे ये आपने सुना सबसे पहले रविंदर जी। उसके बाद अस्पताल में जब आप गए, क्या आप भी अंश के साथ उसी गाड़ी में अस्पताल गए थे या आप अलग से अस्पताल पहुंचे थे?
0: नहीं नहीं सर, मैं तो धंधे बताया, मेरे को बाद में खबर मेरे चाचा के लड़के ने आया मेरे को बताया कि तुम्हारा बच्चा जो कि तबीयत खराब है, चलो वहाँ पे ओली फैमिली में, तो मैं गया ओली फैमिली में तो मेरे को पता चला कि एक्सीडेंट हो गया बच्चे का, और बाकी लोग बताया कि ऐसे ऐसे लेडीज जो गाड़ी चला रहे थे तुम्हारा बच्चा साइड में खड़ा था और जो कि वो फ़ोन से बात कर रहे थे लेडीज महिला, तुम्हारे बच्चे को जो कि एक बार धक्का मारे तो गिरा और बच्चे फिर दोबारा खड़ा हुआ, फिर दोबारा उसने गाड़ी चढ़ाई और चढ़ाई के भागने की कोशिश की तो सब लोग पकड़ के उसको रोक के उसको पुलिस के हवाले किया।
1: रविंदर जी, आरोपी से आपकी कोई अभी बात हुई है? जब से ये इंसिडेंट हुआ है तब से कोई भी आपका कम्युनिकेशन हुआ है आरोपी से?
2: मेरा लाल का कल बर्थडे था, मेरी एक ही औलाद था, मेरा अब कोई नहीं है, मेरा अब कोई नहीं, मेरे न्याय चाहिए, उसको फांसी का सजा दो, मेरी एक ही औलाद था, मेरा अब कोई नहीं है, आई ओ माई, मेरा एक ही औलाद था, मेरा अब कोई नहीं है, उसको फांसी की सजा दो, मेरा बस यही न्याय है, मेरा उसको फांसी का सजा दो।
1: पूनम जी, राजेंद्र जी, हम एक बार फिर आपके प्यारे बेटे अंश के लिए तहे दिल से गहरा शोक व्यक्त करते हैं, एंड वी विल मेक श्योर दैट यू नो द पेरेंट्स गेट

0: out. Homes have disappeared. More than 500 shops in the main market have either been washed away or buried. NDTV has traveled through some of the most devastating parts of Rasuwa, walking through treacherous terrain to bring you the scale of destruction on the ground. My colleague Sikta with this report.
1: Landed, and we are told that some people have been rescued from Shapru and Timor Bazaar, and they are have been ferried to Dhunche. You can see this is the war footing rescue operation which is on in this area of Nepal, and right now there are so many people stranded there for last so many days, 5 days counting, and they have spent their time. We believe the army rescue workers who had reached there managed their food and water, and now they are being ferried to Dhunche. They will be taken to Kathmandu for their further treatment, and if required getting their relatives to Kathmandu. So well, that's the priority. People who are stranded in Shapru and Timor Bazaar, they should be ferried first, and after they have after the people who were rescued have come out of the helicopter, you can see the other amenities, other groceries, everything which is required in that side of Nepal is being ferried back. There are sacks and sacks of grains, there are cookers being sent, there was a generator which was being sent, there's utensil, there are food articles which are constantly being ferried to Shapru and Timor Bazaar. In Dhunche, with camera person Pooja Arya, this is Sikta Deo for NDTV. The continuous rescue work is on in the Rasuwa district, and well, this was the area which has faced maximum destruction after the flash floods. We are at Dhunche helipad, where the army helicopters and administration and Nepalese government helicopters are constantly sorting from this helipad, taking all the basic amenities like generators, food articles, medicines, continuously towards Timor Bazaar and Shapru. Well, that's the area which has been completely cut off from this side of Nepal, and the priority is to reach out to those people who are stranded there. And also during rescue operations, the bodies which are being recovered are being brought back by these helicopters. You can see how the articles are being loaded here. This is the way they are operating since yesterday. It is a huge task. Since yesterday, this rescue operation has been on at a war footing, and right now behind me constantly the helicopters of the army and the government are sorting and taking whatever is required right now to the China-Tibet border. From Dhunche helipad, this is Sikta Deo with camera person Pooja Arya for NDTV.
2: जाने के लिए व्यवस्था की जा रही है, और आप बता रहे थे कि वहां आप सेना के साथ थे, सुरक्षित रखे गए थे, और जैसी सुविधा हुई आपको यहां पहुंचाया गया आज. आप इस दौरान आपने इन दिनों में वहां क्या देखा है? शापरू बाजार में रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है, क्या आप इस वक्त बता सकते हैं आपने क्या देखा?
3: रेस्क्यू करने के लिए बहुत डेंजर है, उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके रेस्क्यू कर रहा है, क्योंकि नीचे बहुत डेंजर है, जाने से बहुत डर लगता है. इंसान लोग हम इस 6 दिनों में बिना लायक ही बस, जब रात हो जाएगा ऊपर जाएगा बैठेगा, जब सुबह आ जाएगा दिख जाएगा किस भी नहीं.
2: तो नीचे जहाँ रेस्क्यू चल रहा है वहाँ पे बॉडीज हैं, वहाँ पर क्या देखा है आपने, किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है?
3: सब ठीक चल रहा है, चलना हम लोगों ने जितने सर्दी बॉडी निकल रहा है, क्योंकि वो बहुत डेंजर है, मूट है ना, बहुत गीला है, माटा माटे बहुत गीला है ना, तो जाने से बहुत खतरनाक है, बहुत तकलीफ होता है, उन लोगों को तकलीफ हो तो भी जाके बॉडी उठा के लेता है.
0: We bring you more ground reports. At Tribhuvan University Teaching Hospital, 59 bodies have been received, but only 8 have been identified. The bigger challenge is tracing nearly thousands missing in terms of the people as of now in Nepal, but some bodies carried far downstream by floodwaters, making identification extremely difficult. Here's a ground report from inside the hospital.
1: There are a lot of people who are walking up to hospitals to ensure that those missing in their families or relatives are getting registered by name here. I have someone. आपके कितने लोग मिसिंग हैं यहाँ पर? आप यहाँ जो नाम लिखवाए हैं मिसिंग लिस्ट?
4: मेरे को भी यकीन नहीं है कि इतने आदमी हैं, लेकिन बहुत हैं, बहुत हैं।
1: A lot of people have come at the hospitals here, and I'm at the Tribhuvan University Hospital and Training Center, where these people and the teaching hospital has been one of those centers where people are walking it continuously to get the names of those missing registered, or even contact them who have their names registered already. सर ये कौन है?
5: ये हमका करे साउलो को आदमी है, बीबी है,
1: इंडिया से।
6: It's been 5 days. I'm waiting here for my father and mother. They are my world. I'm skipping my school days. मैं अपने स्कूल को लीव करके यहाँ आई हूँ अपने मम्मी पापा को ढूंढने के लिए। भगवान से यही कृपा है, सभी को रिक्वेस्ट है अगर इन दोनों को कहीं भी देखा है तो इस नंबर में प्लीज फोन कीजिए। मैं अभी तक रो नहीं रही हूँ, मुझे पता है मेरी मम्मी पापा आएंगे, मुझे देखने के लिए आएंगे ये लोग।
1: आपका भी कोई मिसिंग है? ये कौन है भाई साहब, कहाँ?
3: अपना ही भाई है उसका।
1: ये भी मिसिंग है? आपने आर्मी से बात की?
3: बात की है, कोई कांटेक्ट में नहीं है रे।
1: हंड्रेड्स ऑफ फोटोग्राफ्स दैट हैव बीन पुट अप हियर ऑफ दोज हु हैव बीन मिसिंग, समवन और द अदर हैज कम हियर एंड पुट अप फोटोग्राफ।
7: टिल नाउ इट्स फिफ्थ डे, टुडे इज संडे, एंड वी हैव रिसीव्ड 56 पेशेंट्स इन आवर हॉस्पिटल, एंड आउट ऑफ दोज वन पेशेंट वी कुडंट सेव हिम, अदर पीपल आर रिकवरिंग, 3 पेशेंट्स आर इन द आईसीयू, एंड we are still receiving patients. Yesterday evening we received one small kid after she was rescued after 70 hours of the incident, and she was mud drowned and had multiple injuries. So on top of that, the other thing is we have also received around 59 deceased bodies, and out of those 8 bodies we could identify and manage accordingly.
1: The transport industry in the entire country of Nepal has been huge, running to a tune of around 1 lakh vehicles, which includes tankers, special vehicles, and even a lot of small and big vehicles that are utilized for ferrying essentials across the country. But even that has taken a major hit, with thousands of trucks and tankers stuck almost everywhere. To talk more on this, I have with me Harpal Singh, who's been into the business, and give us an idea, sir, कितनी बड़ी ये त्रासदी है और आप लोगों के लिए भी कितना नुकसान हुआ है?
8: अभी तो फिलहाल तो देखिए ऐसे है कि नुकसान की बात तो अभी करके कोई मतलब नहीं आ रहा, नुकसान तो बहुत ही है। ट्रांसपोर्ट समझिए, हम लोग समझिए 1-2 साल बहुत पीछे हो गए जिस हिसाब से ये हुआ है। तो अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पहले जो बेचारे जिनका ये फ्लड वगैरह जहाँ आया उनके लिए कुछ सोच के उसके बाद फिर गवर्नमेंट से हम अपने लिए बातचीत करेंगे कि थोड़ा बता हम लोगों को भी राहत मिले, जो EMI वगैरह जो देनी है बैंकों की, ये इधर वगैरह के लिए थोड़ी बहुत हम लोगों को छूट मिले, ये मिले वो मिले करके, इसलिए हम लोग उसके पीछे बाद में करेंगे, पहले इन लोगों के लिए कुछ सोचें।
1: कितना बड़ा बिजनेस है ये ट्रांसपोर्ट का, अगर अमाउंट की बात करें, गाड़ियों की बात करें और लोगों की बात करें,
8: अगर सब मिला के अगर करोगे तो ये तो अरबों का हिसाब, अरबों में चले जाती है ये जो ये ट्रांसपोर्ट की लाइन है। तो लेकिन अब देखिए आप 5 दिन से रोड पूरी बंद की हुई है, हाईवे पूरा बंद है, तो इस गाड़ियां जिधर की हैं उधर ही खड़ी हैं लोड।
0: The Himalayas are clearly sending out a warning. The devastating glacier collapse in Nepal has once again put the spotlight on a growing mountain hazard, as rising temperatures and retreating glaciers make Himalayan terrain increasingly unstable. The Nepal disaster itself has not been conclusively linked to climate change. A UN-led study has identified 407 glacial lakes across the Hindu Kush Himalaya at risk of bursting, and the frequency of glacial lake outburst floods has increased nearly fivefold since the year 1950. There's more in this report.
9: The Himalayas are sending out a warning. The devastating glacier collapse in Nepal has once again put the spotlight on a growing mountain

0: and hazard, as rising temperatures and retreating glaciers make Himalayan terrain increasingly unstable. The Nepal disaster itself has not been conclusively linked to climate change. A UN-led study has identified 407 glacial lakes across the Hindu Kush Himalaya at risk of bursting. And the frequency of glacial lake outburst floods has increased nearly fivefold since the 1950s. With the recent disaster in Nepal raising fresh concerns, Sikkim too is on alert. As glaciers retreat, meltwater accumulates to form glacial lakes. These natural reservoirs can burst after an earthquake, landslide, avalanche, or extreme rainfall, unleashing massive volumes of water downstream. This is called a glacial lake outburst flood, or GLOF. And scientists say these events are becoming increasingly frequent.
1: Our Hindu Kush glaciers, उनके फटने की जिसे हम ग्लॉफ कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट उसके जो चांसेस हैं वो पिछले 70-75 सालों में करीब 5 गुना हो गए हैं 407 ग्लेशियर लेक आइडेंटिफाई हुई हैं और अलग अलग देशों में उसका ब्यौरा है पाकिस्तान है इंडिया है चाइना है भूटान है हम सब लोगों को पता है कि कौन कौन सी लेक जो हैं वो खतरे के निशान से ज़्यादा मतलब उनमें चूंकि वॉल्यूम अगर बढ़ जाता है तो वो खतरे किसी भी टाइम आउटफ्लो हो सकता है
0: द वार्निंग इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट फॉर सिक्किम द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज मैप्ड 85 ग्लेशियल लेक्स ऑफ दीज 17 आर हाईली वल्नरेबल एंड रिट्रीटिंग एंड 7 कुड पोटेंशियली बर्स्ट ड्यूरिंग अ मेजर अर्थक्वेक और क्लाउड बर्स्ट Authorities say sensors have been installed across glaciers and rivers to provide early warnings. And this is not a threat confined to one country. The Himalayas stretch across borders, while rivers and disasters can travel far beyond them. Bureau Report, NDTV.
2: We bring you an extremely unfortunate incident from the national capital. Let me just warn you that the visuals could be disturbing to some. A 3-year-old child has been assaulted at a play school in northeast Delhi. The case came to light after the child complained of severe ear pain. A doctor reportedly found swollen eardrums, with the family alleging that the child had been beaten and his ears pulled. CCTV footage allegedly showed the child being tied to a chair and assaulted. The child's father claims the assault took place over 3 days, from the 16th to the 18th of August. He alleges the child was tied to a chair, hit on the stomach and beaten so badly that he continued to cry. The accused nanny has been arrested and the accused teacher has only been dismissed for now while the police investigate the role of the other accused. I spoke to the father of this 3-year-old this morning. He says his son is living in complete fear, completely traumatized by the incident. Here's that entire conversation. I have the father of the 3-year-old victim live with me here on Breaking Ground. Sir, thank you so much for speaking to us here on NDTV. सबसे पहले आज आपका बेटा कैसा है और इस इंसिडेंट के बाद उसमें आपने क्या बदलाव देखे हैं?
3: हाँ जी मैम अभी ना मैम मेरे बच्चे की इतनी गंदी कंडीशन ख़राब है जब वो सो के उठता है ना सुबह मॉर्निंग में तो मैम वो रोता है सबसे पहले तो उसे ऐसा फील होता है कि अब मेरे को स्कूल में भेजेंगे तो उसके आंसू नहीं रुकते मैम और इतना गंदी कंडीशन है उसकी जो स्वेलिंग है ना आँखों की और जो कान के उसके पर्दे सूज रहे हैं उनमें अभी भी इतनी गंदी कंडीशन है वो रो रहा है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है अब पता नहीं मैम कब तक ये ट्रॉमा से इस चीज़ से बाहर आएगा
2: डॉक्टर क्या कह रहे हैं उसके बारे में
3: मैम डॉक्टर ने ये बोला था कि अब मैंने डॉक्टर को कल दोबारा दिखाया था तो डॉक्टर ने बोला था कि इसके तो अभी कान के पर्दे अभी भी सूज रहे इसकी तो स्वेलिंग ही नहीं जा रही और मैम जो सी टी स्कैन करवा नहीं पा रहा क्योंकि बार बार इसको बेहोशी की दवाई देते हैं ये जो मशीन में जो आवाज़ें होती है उसकी वजह से उठ जाता है तो मैम इतना गंदा कंडीशन हो रखी है इसको ना दर्द भी सहन नहीं हो रहा इस टाइम पर
2: मुझे पता है इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट टू रीलिव व्हाट हैपेंड लेकिन अगर आप हमें 18 अगस्त के बारे में कुछ बताएंगे आपके बेटे के साथ क्या हुआ और डॉक्टर ने उसके कान के चोट
3: मैं बताता हूँ मेरे बेटे के साथ ना
2: कहा था जी बोलिए
3: हाँ जी मैम बेटे के साथ प्रॉब्लम तो काफ़ी दिनों से हो रही थी तो 18 तारीख को जब बेटा स्कूल से घर पे आया था ना मैम तो मैम उसके वॉमिट हो गए घर पे और जैसे उसके वॉमिट हुई उसको चक्कर आए तो

0: उसको तुरंत पेडिट वाले डॉक्टर के लेके भगा। पेडिट वाले डॉक्टर ने बोला कि आप इसको ईएनटी वाले डॉक्टर के लेके जाओ, उसकी दोनों आँखों में स्वेलिंग आ रखी है। अब मैम इसको ईएनटी वाले डॉक्टर के लेके भगा तो ईएनटी वाले डॉक्टर ने बोला कि इसकी तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, आप इसको एडमिट कर दीजिए कि ये सहन नहीं कर पाएगा। मैडम मैम डॉक्टर साहब हुआ क्या है? कह रहे कि इसके इतने पर्दे सूज रहे हैं कान के कि ये बच्चा कैसे हैंडल कर रहा है। मैंने कहा सर ये डेली रोता है ना, ये बता पाता ढंग से। तो डॉक्टर ने बोला कि आप इसको एडमिट कर दो 3 दिन के लिए। तो मैम मैंने एडमिट करा नहीं, सीबीसी कराया, सीटी स्कैन इसने जब भी नहीं कराया। तो मैम फिर मैं इसको घर लेके आ गया। फिर जो मेरी वाइफ थी वो स्कूल गई, तो उसने स्कूल वालों से पूछा कि आप मेरे बेटे के साथ मारपीट करते हो? तो उन्होंने बोला नहीं, जो ऑनर थी संगीता बंसल, जो इनकी प्रिंसिपल थी नीलम, इन्होंने बोला कि नहीं, हम बच्चों को मारते नहीं हैं, हम अपने बच्चों को ठीक से रखते हैं। तो मैंने बोला मैम एक बार आप सीसीटीवी दे दीजिए हमें एक्सेस, मेरी वाइफ ने बोला। तो उन्होंने बोला हम 1-2 दिन में आपको एक्सेस दे देंगे इसका सीसीटीवी। तो मैम फिर 1-2 दिन हमने सीसीटीवी नहीं लिया, बेटे की तबीयत ख़राब थी। फिर सैटरडे संडे आ गया बीच में। मैम जैसे ही मंडे हुआ, बेटा भी घर पे रेस्ट पे था मेरा, फिर मंडे भी नहीं गया बेटा स्कूल। ट्यूजडे को मैम जैसे ही बेटा स्कूल गया तो मेरी वाइफ पहुंची पीछे से, तो उन्होंने बोला मेरे को एक्सेस चाहिए इसका। तो
1: लेकिन
0: उन्होंने पहले
1: जब
0: बहुत देर बहस करी कि ऐसे नहीं
1: लेकिन जब
0: मिलता,
1: बच्चा
0: ये है
1: स्कूल
0: वो है।
1: जाता था या सुबह वो
0: हाँ
1: कुछ
0: जी
1: बोलता था कि मुझे स्कूल नहीं जाना है इस वारदात के बाद या पहले?
0: मैम, वो रोता था मैम। जैसे ही स्कूल आता था ना, एक तो स्कूल की ड्रेस नहीं पहनता था, वो घर के कपड़ों में जाता था। फिर उसे ऐसा लगता था स्कूल के कपड़े पहनाएंगे तो मेरे को स्कूल भेज देंगे। फिर मैम उसे घर के कपड़ों में भेज देते थे। फिर मैम जैसी मेरी वाइफ ने वहाँ लड़ाई झगड़ा, मतलब उससे उसने बोला कि नहीं मेरे को सीसीटीवी चाहिए, मुझे एक्सेस दो, मुझे अपने बेटे को देखना है मेरे बेटे के साथ कोई प्रॉब्लम होती है। तो जब उन्होंने हमें सीसीटीवी दिया, उसके उन्होंने 1500 रुपये चार्जेस करे हमसे।
1: किसने मांगा 1500
0: उसके
1: आपसे?
0: बाद हम घर आ गए तो 1:30 से 2 बजे करीब मैम प्रिंसिपल ने और ऑनर ने मांगे पैसे। कह
1: क्यों?
0: रहे 1500 रुपये चार्जेस है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 1500 रुपये कोई मैम। उन्होंने बोला इसके चार्जेस है 1500 रुपये एक्सेस लेने के, सीसीटीवी देखने के चार्जेस है हमारे यहाँ पे 1500 रुपये। फिर मैम मैंने उनसे, मेरी वाइफ ने बहस नहीं करी, उन्होंने बोला कोई बात नहीं आप दे दीजिए। फिर मैम हम घर पे आ गए। घर पे आकर उन्होंने 1:30-2 बजे हमें लॉग इन करा। फिर 26 तारीख को हमने सुबह जब सीसीटीवी ऑन करा, जब बेटा स्कूल गया था, तो मैम उसमें हमने 26 तारीख की फुटेज ना देख के लाइव, हमने 18 तारीख की फुटेज निकाली जिस दिन बेटे को वॉमिट हुई थी, उसकी आंखें सूज रही थी, कान के पर्दे फट रहे थे उसके, मतलब सूज रहे थे हम, फटने वाले थे। डॉक्टर ने बोला इसकी क्रिटिकल कंडीशन है। हम 18 तारीख को जब हमने फुटेज निकाली, 9:45 के आसपास से लेके 12:30 बजे तक मेरे बच्चे को उन्होंने बांध के रखा है एप्रेन से, और मैम कंटिन्यू उसके कान खींच के उसकी पिटाई लगाई गई है।
1: लगभग 3 घंटे
0: उसमें मेरा बेटा जो एप्रेन से बंधा हुआ है वो, मैम लगभग 3 घंटे है वो एप्रेन से बंधा हुआ है। जब एप्रेन से वो अपने आप को, हाथ तो उसके खोल रखे थे एप्रेन से, पीछे उसको बांध रखा था, जब वो चल चल के कुर्सी से आगे आ रहा है चेयर से, और मैम लड़फड़ आ रहा है कि मुझे खोल दो, तो मैम आया आती है केयर टेकर वहाँ से, वो उसको मारती है गंदी तरीके से। फिर वो दोबारा भगता है कि वो फिर बोलता है किसी टीचर से कि मेरे को खोल दो, अपनी क्लास टीचर से, वो फिर उसको मार के साइड में बिठा देती है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपना एप्रन गलती से खोल लेता है, उसको फोल्ड करके रख देता है, उसे फिर फेंक के मारता है। थोड़ी देर में क्लास टीचर फिर आती है, उसको प्यार में उलझा के, फुटेज है मैम इसकी सब कुछ क्लियर, उसको फिर एप्रन से बांध देती है। वो मैम फिर कोशिश करता है भागने की कि मेरे को कोई खोल दो, कोई खोल दो। उसके बाद वो एप्रन से अकेला बंधा हुआ है, और ना क्लास टीचर रूम में और ना आया रूम में। वो बहुत देर तक आगे स्टूल के पास तक वो गया है, टेबल के पास तक, उसके पास बहुत देर वो बेचारा कभी लात मार रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। उसके बाद पीछे से आया, फिर से आती है, फिर उसको मारती है कंटिन्यू, और इतने गंदे तरीके से मारती है मैम, आप वीडियो भी नहीं देख पाओगे उसके।
1: तो क्लास
0: फिर मैम
1: टीचर
0: मैंने
1: और
0: 17 तारीख की
1: स्टाफ
0: फुटेज
1: और कौन
0: निकाली।
1: था जो मार रहा था आपके बेटे को?
0: क्लास टीचर और स्टाफ मैम जो मार रहे थे वो आया थी इनकी केयर टेकर और इनकी क्लास टीचर थी
1: और जब आपने पहली बार वो सीसीटीवी
0: मैम। फिर
1: फुटेज
0: सत्रह
1: देखा
0: तारीख
1: था
0: को मैंने
1: सर,
0: दोबारा फुटेज
1: आपके मन
0: देखी।
1: में क्या चल रहा था पहली बार जब आपने वो सीसीटीवी फुटेज देखा था एज अ पेरेंट?
0: सर मन में, हाँ जी मैम, पेरेंट्स क्या मैम, मैं तो इतना परेशान हो गया, हम पे तो फुटेज भी नहीं देखी गई, पर हमें जी को पक्का करके हमें आगे की फुटेज तक देखनी पड़ी, क्योंकि हमें ये पता लगाना था कि हमारे बेटे के साथ कब से ये चीज़ें चल रही है और क्या हो रहा है
1: सर, स्कूल का
0: मैम। फिर
1: कहना है
0: उसके
1: कि
0: बाद मैंने
1: आरोपी
0: 17 तारीख की
1: टीचर को
0: फुटेज निकाली
1: डिसमिस
0: उसमें
1: कर
0: से,
1: दिया
0: मेरी वाइफ
1: गया
0: ने।
1: है और वो पुलिस जांच भी पूरी कर रही है, सहयोग कर रही है। पॉक्सो पे केस का FIR दर्ज हुआ है, लेकिन स्कूल ने क्या जिम्मेदारी ली है अभी तक? आपने जब CCTV फुटेज देखा था उसके बाद आपने कोई जिम्मेदारी बात की थी, उन्होंने क्या बोला था?
0: मैम आपको सारी चीज़ें बताता हूँ ना अभी, क्यों मैम जब 17 तारीख को मैंने फुटेज देखी ना अपने बेटे की, तो 17 को भी उसको गंदी तरह टॉर्चर करके मार रहे हैं, साइड में बिठा दिया, कभी लात से मारा है, लात से साइड फेंक दिया कुर्सी से, मतलब इतनी गंदी तरीके से उसकी पिटाई लगाई जा रही है। फिर हमने मैम मेरी वाइफ ने उनकी क्लास जो ऑनर थी इनकी संगीता बंसल, उनको फ़ोन करा गया कि मेरे बेटे के साथ ऐसे हो रहा है, उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, उसने बोला कि नहीं तुम्हारा बच्चा गलत है, तो उसने बोला कि बच्चा गलत है, कोई बच्चा कोई शैतानी करेगा तो तुम उसे बांध के मारोगे,
1: साल का बच्चा गलत है, किसी भी फुटेज में मेरा बच्चा नहीं, शैतानी उन्होंने उसे मारा था।
0: उसके उसकी टीचर ठीक है और उसकी टीचर उसके लिए ठीक है, उनका स्टाफ उनके लिए बिल्कुल ठीक है, हमारा बच्चा उनके लिए गलत था, उनके ये वर्डिंग थी मेरे लिए। फिर उसके बाद मैम बहुत देर हो गई थी, हमने उनसे बातें करी, उन्होंने हमसे बात ही नहीं करी, उन्होंने हमारा फ़ोन काट दिया शाम को। फिर 27 तारीख को मैम मॉर्निंग में हम स्कूल पहुँच गए, स्कूल पहुँच के भी उनका ऐसा बिहेवियर था, मैम मेरे पास फुटेज भी है उनकी, उन्होंने हमसे ठीक से बात तक नहीं करी, उन्हें कोई गिल्टी फील भी नहीं था, उन्होंने ये तक नहीं बोला कि हमने मारा है, वो वीडियो देख के भी कह रहे हमने कुछ नहीं करा, और हमारा स्टाफ ऐसा नहीं है, आप पे जो होता हो आप कर लेना हमारे खिलाफ, ये कह के उन्होंने मेरे को वहाँ से भेज दिया इनकी क्लास टीचर ने, क्लास टीचर ने नहीं सॉरी इनकी प्रिंसिपल ने और ऑनर ने।
1: इसका ये मतलब है कि आप आपका बेटा एक दिन मार नहीं खा रहा था, बहुत दिनों से मार खा रहा था, जैसे आप बोल रहे हैं he was being assaulted।
0: मैम मैंने 18 तारीख 17 तारीख 16 तारीख की फुटेज निकाली थी
1: जी,
0: हाँ जी मैम 18 17 16 की मैंने जो फुटेज निकाली, उन तीनों दिन बेटे को डेली कंटिन्यू इतनी गंदी तरह टॉर्चर होकर मारा जा रहा था, बहुत गंदी तरीके से। जब मैंने 15 तारीख की और फुटेज निकालने की कोशिश करी तो 15 तारीख से इनकी फुटेज बंद हो गई, 15-14 की वो निकली नहीं मैम
1: जी।
0: तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैम ये तो कब से पिट रहा होगा, हमें भी नहीं पता कब से ट्रॉमा में है मेरा बच्चा।
1: बिल्कुल एब्सोल्युटली,
0: इन्होंने तो मेरे बच्चे को बेकार कर दिया।
1: आई एम सॉरी दैट यू हैव टू गो थ्रू दिस ऑर्डियल सर, आखिरकार में एक ही सवाल है आपसे, आप
0: खींचना गंदी तरीके से
1: जी, आखिरकार में एक सवाल है आपके लिए, आपके हिसाब से आपके
0: बेटे मेरा बच्चा ना ऐसा हो चुका है जी। मैम बोली
1: जी, मैं पूछ रही हूँ आपके बेटे के साथ जो हुआ है उसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, अब जस्टिस आपके लिए क्या होगा?
0: मैम मैं आपको जी मैम देखो क्लास टीचर्स और आया का तो पूरा आपको पता है मैम कितने गंदे तरीके से मारा गया है बच्चे को। मैम इसमें मैं गलती मैनेजमेंट की भी मानता हूँ, जब मैनेजमेंट के सामने CCTV फुटेज चलती रहती है कंटिन्यू, तुम उसको कंटिन्यू हमारे बच्चे को देख रहे हो और तुम्हें इतना सा भी फील नहीं हो कि हमारा बच्चा पिट रहा है, तुम उसमें गलती भी नहीं मान रहे। मैम कोई मैनेजमेंट अपने सामने लाइव CCTV अपने सामने डेली देख रहा है, उसको ये भी नहीं दिख रहा उसमें 3 घंटे की किसी का बच्चा एपरेंस से बांधा जा रहा है, उसको मारा जा रहा है। मैम या तो इसमें वो लोग शामिल थे, जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने मुँह बंद कर लिया अपना, फिर वो बात को पलटने लगे कि हम पूछते हैं। जब हम इसके लिए CCTV के लिए भी स्कूल मेरी वाइफ गई थी तो जो ऑनर थी उन्होंने आपस में पहले बहुत देर बात करी है कि ये CCTV के लिए आए हैं, मतलब उन्होंने वो CCTV में देना भी नहीं चाहते थे, उन्होंने आपस में पहले बातें करी है, फिर उन्होंने ये सोचा कि अभी इन्हें CCTV दे देंगे तो ये लाइव देखेंगे तो आगे को हम बच्चे के साथ नहीं करेंगे। पर उन्हें ये नहीं पता था कि मैम हमने सबसे पहले पुरानी फुटेज देखी जिसमें बच्चे के साथ उल्टी हुई थी, जो उसके साथ प्रॉब्लम हुई थी।
1: आपकी अब मांग क्या है?
0: 4 दिन की फुटेज आ गई।
1: आपके लिए जस्टिस कैसे लग रहा है? व्हाट डू यू थिंक जस्टिस इज इन दिस केस?
0: इनको गिरफ्तार किया जाए। मैम मेरे को तो इतना ये चाहता हूँ मैम ये जल्द से जल्द अरेस्ट हो, अभी तक कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ इसमें, एक आया सिर्फ अरेस्ट हुई है
1: जी। सर थैंक यू सो मच, वी ऑफ कोर्स हैड टू विदहोल्ड द नेम ऑफ द फादर इन दिस केस बिकॉज दिस इज अ पॉक्सो केस, वी कैन नॉट टेक द नेम ऑफ द स्कूल और द चाइल्ड, बट थैंक यू सो मच, दिस इज बीन अ वेरी डिफिकल्ट फेज फॉर यू एंड आई होप यू गेट जस्टिस एट द एंड ऑफ द रोड एंड आई होप योर सन फील्स बेटर, दैट इज मोर
0: इंपॉर्टेंट। और बताना चाहूंगा मेरे बेटे जी,
1: बोलिए
0: मैम एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको
1: जी,
0: मेरे बच्चे के साथ 15-20 दिन से मैम वो पॉटी तक साफ़ नहीं करा रहा, वो वॉशरूम तक नहीं जा रहा, अब मुझे नहीं पता उसके बाद वॉशरूम में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वो मैम इतना परेशान हो चुका है और हम भी इतने परेशान हैं उसको लेके, मैम मैं बता नहीं पा सकता आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है उसके साथ, वो अब ऐसा हो चुका है इतना डर चुका है कि अगर हम उससे 1 2 3 ABCD भी बुलवाते हैं ना तो अपने दोनों, अगर थोड़ा भूल जाता तो दोनों हाथ आगे कर लेता है, कान पे लगा लेता है कि अभी मेरे को मारेंगे। वो हमसे भी इतना डरा पड़ा है कि मैं कुछ गलती करूँगा तो सब लोग मुझे मारेंगे, वो इतना ट्रॉमा में जा चुका है। मैम
1: आर यू टेकिंग हिम टू अ डॉक्टर?
0: उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ये तो बताओ। उन लोगों ने तो मैम कल को मर जाता। हाँ जी,
1: आप डॉक्टर के पास ले गए, साइकोलॉजिस्ट के पास?
0: हेलो मैम, आज उसकी काउंसलिंग आज से स्टार्ट है मैम। अभी रक्षाबंधन था, फिर सैटरडे संडे आ गया था, तो आज मंडे आज उसकी काउंसलिंग स्टार्ट है मैम।
1: दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ही कठिन रहा है आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। वी विल प्रे, वी विल होप एंड वी विल मेक श्योर दैट वी हेल्प यू गेट जस्टिस इन दिस केस। थैंक यू सो मच सर फॉर स्पीकिंग टू NDTV। In news just coming in, a disturbing case has emerged from the national capital where a 16-year-old girl from Uttar Pradesh was allegedly gang-raped inside a moving sleeper bus while trying to reach Noida. According to the police, the student had left her home in Mainpuri district and was on her way to meet a cousin in Noida. Stranded in Greater Noida amid heavy rain and darkness, she reportedly sought help from the occupants of an empty bus. The driver and conductor allegedly told the teenager they were headed to Sector 63 in Noida and gave her a lift. Police say the girl was then sexually assaulted inside the bus during the journey to Delhi, covering a distance of almost 47 kilometers. My colleague joins me live on the story. All right, we seem to have lost the line with Tejshree, but we'll try and reconnect with her. But we're talking of a distance of 47 kilometers that she was sexually assaulted. The incident reportedly took place near Kashmiri Gate, ISBT, on the night of the 4th. Delhi police have arrested both the accused, identified as driver Kuldeep and conductor Sandeep. The bus has been seized and sent for forensic examination. The police say further investigation into the case is underway. Tejshree is live with us. Tejshree, I just want to make sure we know when the incident took place. What are the details when it comes to this investigation? What do we know about the rape survivor?
2: Well, yes, what we are given to understand is that the incident took place on August 4 and both the accused were arrested and now they are under the judicial custody. But important to note over here is that how this incident actually transpired. Let me also highlight the fact that she actually was supposed to go to Sector 63 in Noida. She started from her residence in Mainpuri in Uttar Pradesh and got down accidentally here at Pari Chowk, and currently we are reporting from the very location from where the survivor boarded the bus. However, the bus driver Sandeep and conductor, both of them, Kuldeep and Sandeep, both of them actually told her that they are heading towards Sector 63. However, they were heading towards Kashmiri Gate. However, towards she could not understand that it was a false signal given by them, and she got into the bus. Post that, they followed the same route from where we are reporting right now, and from here they headed towards Sector 93 via Advan Tower, and then they moved towards DND is what we are given to understand via our sources in the Delhi police, and thereafter they finally reached Kashmiri Gate. And after reaching at Kashmiri Gate, it took approximately 45 to 50 minutes is what we are given to understand. They stopped the bus over there. The girl got down from the bus and then she took an auto. She went to the police station, filed a complaint, FIR was registered. So this is the entire sequence of events. But important over here is to note that you can see that how busy this actually square is. And at a point of time when she boarded the bus, what we are given to understand is that it was 9:30 p.m. And the bigger question over here is that how many actually checkpoints did this entire stretch had at that day and on that particular given time, in between 9:30 to 10:30 till the time the bus reached Kashmiri Gate.
1: All right, Tejshree, that is an increasingly disturbing incident with those details that you're sharing with us. Very unfortunate. The men have been arrested. We'll wait to see what comes of it. Slip into a short break. On the other side, we return with news from Bishkek, where the SCO summit is going to be underway shortly. We will get you the latest with my colleague Aditya Rajkol in moments from now. Stay tuned.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: Kathmandu for their further treatment, and if required, getting their relatives to Kathmandu. So, well, that's the priority. People who are stranded in Shapru and Timor Bazar, they should be ferried first, and after they have after the people who were rescued have come out of the helicopter, you can see the other amenities, other groceries, everything which is required in that side of Nepal is being ferried back. There are sacks and sacks of grains, there are cookers being sent, there was a generator which was being sent, there's utensil, there are food articles which are constantly being ferried to Shapru and Timor Bazar. In Dhunche, with camera person Pooja Arya, this is Sikta Deo for NDTV. Continuous rescue work is on in Rasua district, and well, this was the area which has faced maximum destruction after the flash floods. We are at Dhunche helipad, where the army helicopters and administration and Nepalese government helicopters are constantly sorting from this helipad, taking all the basic amenities like generators, food articles, medicines continuously towards Timor Bazar and Shapru. Well, that's the area which has been completely cut off from this side of Nepal, and the priority is to reach out to those people who are stranded there. And also during rescue operations, the bodies which are being recovered are being brought back by these helicopters. You can see how the articles are being loaded here. This is the way they are operating since yesterday. It is a huge task. Since yesterday, this rescue operation has been on at a war footing, and right now behind me, constantly the helicopters of the army and the government are sorting and taking whatever is required right now to the China-Tibet border. From Dhunche helipad, this is Sikta Deo with camera person Pooja Arya for NDTV.
1: अब आगे आपको काठमांडू पहुंचाने के लिए व्यवस्था की जा रही है, और आप बता रहे थे कि वहां आप सेना के साथ थे, सुरक्षित रखे गए थे, और जैसी सुविधा हुई आपको यहां पहुंचाया गया आज। आप इस दौरान आपने इन दिनों में वहां क्या देखा है? शापरू बाजार में रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है, क्या आप इस वक्त बता सकते हैं? आपने क्या देखा?
2: रेस्क्यू करने के लिए बहुत डेंजर है, उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके रेस्क्यू कर रहा है, क्योंकि नीचे बहुत डेंजर है, जाने से बहुत डर लगता है इंसान लोग। हम इस 6 दिनों में बिना लाइट के बस, जब रात हो जाएगा ऊपर जाएगा बैठेगा, जब सुबह आ जाएगा दिख जाएगा, किस भी नहीं।
1: तो नीचे जहाँ रेस्क्यू चल रहा है वहाँ पे बॉडीज हैं, वहाँ पर क्या देखा है आपने, किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चल
2: रहा है? सब ठीक चल रहा है, चलना हम लोगों ने जितने सभी बॉडी निकल रहा है, क्योंकि वो बहुत डेंजर है, मूत है ना बहुत गीला है, माटा माटे बहुत गीला है ना, तो जाने से बहुत खतरनाक है, बहुत तकलीफ होता है उन लोगों को, तकलीफ हो तो भी जाके बॉडी उठा के लेता है।
3: 6 days after the flood disaster at the helipad in Nuwakot in Nepal, people are still searching for their loved ones through photographs printed on newspapers. My colleague Ranveer has spoken to a family from Ranchi that has travelled to Nepal to find their loved ones.
4: नेपाल की बाढ़ को 6 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन 6 दिन बाद भी जिंदगी कहीं ना कहीं ठहरी हुई है और लोग अपने परिजनों को तलाशने के जद्दोजहद में लगे हुए हैं। मैं इस वक्त आर्मी बेस कैंप पर हूं, और आप तस्वीर देखिए कैसे एक लिस्ट है, इस लिस्ट में कुछ तस्वीरें हैं जो शव बरामद हुए हैं, और ये क्षत विक्षत हालत में जो तस्वीरें शवों की हैं, उन शवों की तस्वीरों को यहाँ की पुलिस, आर्मी, जो भी लोग भटकते हुए अपने परिजनों को ढूंढते आ रहे हैं, उन लोगों को दिखा रही है, पहचान कराने की कोशिश कर रही है, और हर शव के साथ एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। कोशिश ये है कि किसी की पहचान हो जाए, और जो लोग यहाँ भटकते हुए दूर दूर से अपनों की तलाश में आए थे, अब उनके मिलने की गुंजाइशें तो कम हैं, लेकिन अगर वो शव यहाँ पर बरामद हुआ है तो कम से कम उनके शवों को उनके परिजनों को सौंपा जा सके। इस तरह से एक संघर्ष चल रहा है, दूर दूर से लोग आकर के यहाँ लाइन लग लगाए हुए हैं, परेशान हैं, और इस बीच प्रशासन की पूरी कोशिश है कि वो मदद करें, लेकिन लोग इन शवों की तस्वीरों को देखकर भी पहचान पाने में मुश्किल में आ रहे हैं, और इस तरह से एक कोशिश अपनों को ढूंढने की लगातार दिखाई दे रही है। ये देखिए, मेरे हाथ में एक लिस्ट है, और इस तरह से यहाँ पर सारी चीज़ें, उनकी डिटेल्स लिखी हुई हैं, पुरुष है, महिला है, जो मिसिंग लोगों की लिस्ट है वो लिस्ट यहाँ पर इस तरह से रखी गई है, और ये सारे जो लोग हैं जो यहाँ भटकते आए हैं उनको दिखाई जा रही है।
5: मेरा गांव का एक आदमी लापता है, खोजने के लिए आया है।
4: कब से कब कहाँ थे वो?
5: त्रिशूली 3B।
4: अच्छा, टनल पे?
5: नहीं,
4: पावर प्लांट पे।
5: अपार्टमेंट में
4: वहाँ काम करते?
5: ऑफिस में। अच्छा, ऑफिस में था, वहाँ काम करते था।
4: तो उनकी तो संभावना ये भी है कि वो टनल में फंसे हुए हों या बह के आए हों, कुछ नहीं पता?
5: नहीं पता।
4: कुछ तस्वीर वगैरह मिली है?
5: नहीं मिला है।
6: मैं परसों से यहाँ पे हूँ, लैंग्वेज के चलते कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है नेपाल मिलिट्री से। इंडियन मिलिट्री बेस यहाँ है नहीं, ऊपर में कहीं बना हुआ है। एक इंडियन मिलिट्री आर्मी मुझे मिले, मैंने उनको अपना वो लोकेशन।
4: आपका लापता कौन है?
6: मेरा छोटा भाई।
4: हाँ भाई, कहाँ घूमने आया था?
6: नहीं, वो यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट में एडमिन का काम करता था। अच्छा। जस्ट यहाँ से 20 किलोमीटर ऊपर शांतिपुर करके एक जगह है, शांति बाजार, सॉलिटेयर मार्केट के पास। वहाँ पे तो अभी कुछ नहीं बचा, लेकिन परसों जो लोग रेस्क्यू किए थे उनके टीम से, उन्होंने उनको भागते हुए देखा था। बट वो वहाँ पे एक स्टैंडिंग पहाड़ है, सीधा स्टैंड पहाड़ है, तो उस लोग बाकी लोग तो चढ़ गए, ये बीच में कहीं मिड में फंस गए हैं, जहाँ पे ये स्टक हो गए हैं। इधर ब्रोकन हो गया हाथ पैर कुछ, या फिर कुछ चोट लगी है।
3: Nepal is also staring at a massive reconstruction bill after the devastating floods that have ravaged parts of the country. The initial estimate is between $4 and $5 billion, which is around a third of Nepal's annual budget and close to a tenth of its economy. Nepal's finance minister has stressed that this is only an initial estimate. Here's a report.
7: The scale of devastation in Nepal is now translating into a staggering economic crisis. The floods have ripped through communities in the Himalayan border region, leaving behind a trail of destruction. Homes and infrastructure damaged. Roads and bridges have been swept away. And critical hydropower projects have also been hit. But as Nepal battles the immediate emergency, the country is already looking at the cost of rebuilding. Finance Minister Swarnim Wagle says the initial reconstruction estimate is between $4 and $5 billion. That's around a third of Nepal's 2026-27 budget, which is estimated at $15.9 billion. The figure is equivalent to around 10% of its economy and roughly a third of its $15.9 billion annual budget. The figure is only an initial estimate. For a country still battling the immediate human crisis, the road to recovery is already shaping up to be an enormous financial challenge. The World Bank has offered up to 25 billion Nepalese rupees in emergency financial assistance for rescue, relief and reconstruction. India has already provided humanitarian assistance and disaster relief. New Delhi has stepped up its support with 62 tons of relief material, 3 military airlift and IAF helicopters, while deploying a specialized tunnel rescue team and a 6-member forensic team.
8: The generosity of the Indian government has been really noteworthy. And as you can see, there have been special supplies flown in from New Delhi at this time. But for the reconstruction itself, I think now, the government of India has indicated to us that they would be able to provide very generous assistance, and that has been forthcoming from all our neighbors as well.
7: For now, however, the search continues. Nepal is still counting its dead, searching for its missing, and trying to reach communities cut off by the floods. But once the waters recede, the next battle will begin, the battle to rebuild. Bureau Report, NDTV.
3: Here's the worrying news, the Nepal floods may also have another major impact, this time on India, as flood waters move downstream. Parts of Madhya Pradesh are already witnessing severe flooding and waterlogging. Chitrakoot is facing severe flooding, while Satna is seeing flood-like conditions, and Panna remains on waterlogging alert. But the bigger concern now is the rising water levels at reservoirs across India. The flood situation in Chitrakoot worsened after the Mandakini River swelled, causing damage to infrastructure, including the Ramghat Bridge, and affecting several nearby villages, with more

0: water making its way downstream, authorities are closely monitoring the situation. My colleague Akash Zavedi now joins me live from Chitrakoot and MP. Akash, what can you tell us about the situation in the city?
1: देखिए, लगातार जो मंदाकिनी का जलस्तर है, चित्रकूट की प्रमुख नदी है, वहाँ का जलस्तर बढ़ रहा है। तस्वीर देखेंगे आप कि जो घर हैं वहाँ घर के आसपास भी नाव के सहारे चलना पड़ रहा है। कुछ दूर के बाद मंदाकिनी का घाट है जिसका जलस्तर बहुत अधिक बढ़ा हुआ है और पानी का बहाव बहुत तेज है। दो दिन पहले तक यहाँ दो मंजिला जो इमारतें रही हैं वो दो मंजिला इमारतें भी डूबी हुई नजर आई थी और यही वजह है कि अभी तक यहाँ पर जो विद्युत आपूर्ति है, इसके साथ ही जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरीके से प्रभावित हैं। आसपास के रहने वाले जो लोग हैं वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, खासतौर पर नाविक जो परिवार हैं वो नावों में अपने सामान को लेकर जीवन यापन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मंदाकिनी नदी का तट है, रामघाट के पास का इलाका है। यही रामघाट है जो दो दिन पहले तक पूरी तरीके से डूबा हुआ है और जिस नाव में हम सवार हैं अभी ये परिवार खाना तक यहाँ पर बना रहा है क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। जो घर हैं वो अभी भी डूबे हुए हैं, 10-10, 15-15 फीट तक जो नीचे से गहराई है वो देखने को मिल रही है। बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं क्योंकि यहीं पर किचन भी बना के रखा है और यहीं पर सोने की भी व्यवस्था कर रखी है। दीदी, और कोई जगह नहीं बची है आपके पास?
2: अब और कोई जगह नहीं बची है भैया।
1: क्या करते थे आप लोग, कितना नुकसान हुआ?
2: हम लोग तो एक धंधा किए थे, होटल भोजनालय था, वहाँ तो हमारी कुर्सी टेबल तक बह गई हैं, कुछ खाने पीने का सामान भी नहीं है, बिछाने ओढ़ने के लिए तक नहीं बचा है। जहाँ तक हम रक्षाबंधन का त्यौहार करने चले गए थे,
1: घर गई थी आप?
2: हाँ, अपने मायके चले गए थे।
1: बोट पर कितने दिन से है, नाव पर कितने दिन से आप?
2: 3 दिन से है।
1: 3 दिन से इसी नाव पर है।
2: हाँ।
1: खाना भी यही बन रहा है?
2: खाना 3 दिन के बाद बना रहे हैं, आज बना रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं, बच्चे लोग पेट नहीं भर रहा, भूख लगे तो पास वाले दिए हैं सब पड़ोसी लोग दाल चावल, तो बना के उनको खिला रहे हैं, थोड़ा तैयार कर रहे हैं।
1: ये जो बगल दुकानें हैं, जो घर हैं, वो कितने डूबे हुए हैं? क्या यहाँ पे गहराई बहुत ज्यादा है?
2: यहाँ तो बहुत गहराई है, गहराई का कोई अंदाजा ही नहीं है, इतना गहराई है यहाँ।
1: तो लोग जो है वो यहाँ पर यहीं पर खाना बना रहे हैं, यहीं पर रह रहे हैं। एक बार और तस्वीर अगर हम मंदाकिनी का दिखाएं तो मंदाकिनी का जलस्तर क्योंकि नाव की वजह से थोड़ा कम आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो बहाव है नदी का वो बहुत ज्यादा तेज है। बीच में पानी थोड़ा बहुत कम हुआ था लेकिन
0: कल, yes.
1: लेकिन कल रात में जो बारिश हुई है उस बारिश के बाद से फिर से जलस्तर बढ़ने लगा है।
0: All right, thank you for that report. We will keep coming back to you for more. That's a live report from Madhya Pradesh on the worrying situation there. The devastating floods in Nepal are of course raising concerns, like my colleague just pointed out, across parts of India, with several districts in Madhya Pradesh witnessing the impact of heavy rainfall and swelling river systems. In Chitrakoot, authorities are grappling with severe flooding, with rising water levels affecting low-lying areas and disrupting normal life. In Satna, residents are facing flood-like conditions as continuous rainfall and overflowing water bodies have inundated several stretches. Meanwhile, an alert has been issued in Rewa, where officials are closely monitoring the situation amid fears of waterlogging and further flooding. As Nepal battles one of its worst flood disasters in recent years, the ripple effect is being felt downstream, prompting authorities in the state of Madhya Pradesh to continue to remain on high alert. A horrific case of alleged gang rape has emerged from the national capital, involving a 16-year-old grade 12 student from the state of Uttar Pradesh. Police say the teenager was traveling alone after leaving home following a disagreement with a family and was trying to reach her relatives in Noida Sector 63. According to Delhi police sources, the driver and conductor of a sleeper bus allegedly lured her by promising to drop her at Sector 63. Police alleged the teenager was then gang raped inside the moving bus during the journey. CCTV footage helped police identify the bus, leading to the arrest of the driver and conductor. The accused have been identified as 39-year-old Kuldeep and 26-year-old Sandeep. The bus has also been seized, and of course forensic examination is underway as the investigation continues.
3: ये 4 अगस्त से पहले गाड़ी सूरजपुर हेमगिरी में अशोक लीलैंड कंपनी में अपना काम करा रही थी, जिसका एक सेंसर ना मिलने के कारण ये गाड़ी 6 से 7 दिन वहीं खड़ी हुई थी। उसके अलावा ये गाड़ी का जब सेंसर आया तो ये ड्राइवर और कंडक्टर दोनों गाड़ी पे मौका वारदात पहुँचे तो गाड़ी सही मिली वहाँ से, तो कंपनी ने उसे रिलीज कर दिया कि आप ले जा सकते हैं, गाड़ी सही है आपकी। उसके बाद इन्होंने शाम को 5 बजे सूरजपुर से गाड़ी निकाली है हेमगिरी से, उसके बाद इन्होंने गाड़ी वहीं खड़ी कर ली है कहीं साइड से। उसके बाद ये 9 बजे निकले हैं हिमगिरी से, उसके बाद में इन्होंने क्या हुआ है ये हमें नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन बाकी इसमें जो वारदात हुई है उसके जिम्मेदार ये स्वामी वो इन्हीं को पता है।
0: तेजश्री जॉइंस मी लाइव फ्रॉम न्यू दिल्ली। तेजश्री, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द रेप सर्वाइवर फर्स्टली, एंड वेयर डज द इन्वेस्टिगेशन स्टैंड एज ऑफ नाउ? द अरेस्ट हैव बीन मेड, व्हाट इज द पुलिस टेलिंग यू अबाउट दिस इंसिडेंट?
4: Well, we see what we are given to understand right now is both the accused, the driver conductor Kuldeep and Sandeep, both of them are in a judicial custody right now because they were arrested within 48 hours of the after this incident took place and when the FIR was filed, in fact. And actually we are on the same route, that unfortunate route actually from which the bus passed, and this is the same route because the bus started actually from Pari Chowk and it headed towards Kashmiri Gate, which is a stretch of approximately 43 kilometers, and we have approximately crossed around 6 to 7 kilometers, and we just got one checkpoint so far, and we are just also understanding so as to how many checkpoints were actually there or are still actually there on the same route from where the bus passed. But important to note over here is that, you know, what we are given to understand that the incident took place on 4th August, and if we understand the sequence of events, it is that the girl started her journey from Manpuri, that is her residence in the state of Uttar Pradesh, and then she was supposed to reach her uncle's residence in sector 63. However, she accidentally or mistakenly got down at Pari Chowk, and then since it was dark, it was raining, she wanted to get into a bus as soon as possible. There comes this bus which stopped by at Pari Chowk, and the bus conductor gave her a wrong signal and told her that they are moving towards sector 63. However, they were moving towards the Kashmiri Gate. When the girl got into the bus, the conductor started making obscene remarks according to the complaint filed by the girl, and then she was repeatedly raped by the conductor and then subsequently by the driver, and then they abandoned her at Kashmiri Gate.
0: This is extremely disturbing. Thank you, Tejshree, for bringing us the details on that story. Moving on now, a controversial remark by Keralam's Grand Mufti on women stepping out of their homes has triggered a political storm. Abu Bakr Musliar has claimed that bringing women into the public sphere would lead to great destruction and argued that the parda system was prescribed to prevent this. Keralam Minister Bindi Krishna said statements like these push women back by centuries and stress that the Constitution of India guarantees equality to women and men. Congress MP Imran Masood also attacked the remarks, questioning the Mufti's authority to speak on Islamic teachings. And Trinamool Congress MP Sugata Roy said women should be independent and religious leaders should stay away from such matters concerning society.
5: Priyapatta sahodarangale, adu pole സ്ത്രീകളെ ഇങ്ങനെ രംഗത്തിറക്കിയാൽ അത് വലിയ നാശമാണ് എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് പർദാ സമ്പ്രദായം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമങ്ങളാണ്. വഖദ് നഫി ബുയൂത്തിക്കുന്ന വലാ തബറുദിന തബറുദൽ ജാഹിലിയ്യത്തിൽ ഉല, അല്ലാഹു പറയുന്നു വഖർന ഫീ ബുയൂത്തിഹിന്ന, പെണ്ണുങ്ങൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുക്കി ജീവിക്കണം, അവർ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു. അത് ബുദ്ധിപരമായി ആലോചിച്ചാലും അത് ഏറ്റവും വലിയ സംഗതിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അറിവുള്ളവരെല്ലാവരും സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുലമ പ്രത്യേകിച്ചും 100 കൊല്ലം ഇതിവിടെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യത്തുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ അഭിമാനം നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ
6: മനസ്സിലാക്കും. അഭിപ്രായം പറഞ്ഞല്ലോ ശരി. അല്ല, സ്ത്രീകൾ പൊതുരംഗത്ത് വരുന്നതിനോടുള്ള എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചതിനോട് എനിക്ക്
4: A society like Kerala cannot accept this type of statements. This type of statements push women back to centuries. We are abide by the Constitution of India. Constitution of India assures equality to women and also to men, irrespective of sex, religion or something like that. So we can't accept such statement.
7: ये तो गलत बात है, ये सब नहीं होना चाहिए। महिलाओं को स्वाधीनता रहना चाहिए। और ये धर्मियों नेता जो है, इन लोग को ये सब बारे में, सामाजिक बारे में चुपचाप रहना चाहिए।
8: वो इस्लामिक स्कॉलर नहीं हो सकता, उसको इस्लाम की जानकारी नहीं है, उसको इस्लाम की जानकारी नहीं है। रजिया सुल्तान कौन थी भाई? हजरत आयशा का क्या मकाम है हमारे यहां? जिस आदमी को इस्लाम की जानकारी नहीं है, उसको इस्लामिक स्कॉलर कह करके, कोई दाढ़ी रखने से, टोपी लगाने से इस्लामिक स्कॉलर नहीं होता। ये फर्जी जो सरकारी बने हुए हैं ना, जिनको तनख्वाही रखे हुए हैं आजकल टीवी चैनल पर डिबेट में, उनके हुलिये से वो सरकारी इस्लामिक स्कॉलर नहीं बनते, वो सरकारी हैं, तनख्वाही हैं।
9: How regressive is it to say that women should not come on public platforms and they are a great distraction? I mean, the Quran nowhere says that women should sit at home and be confined to their homes. Public appearances are part of living in a civil society.
0: Moving on to another controversial statement, Karnataka Minister Basavaraj Rai Reddy's remarks on Islam have triggered a political face-off in the state. After huge backlash, the Karnataka minister has issued a clarification over his statement by saying, and I quote him here, "I didn't say other religions are less superior." Earlier, the minister described Islam as superior to all other religions, saying it begins with humanity and is a highly humanitarian religion. He also said the Quran is not meant only for Muslims and can be read by anyone. KPCC chief BK Hariprasad distanced the party from the minister's comment and said that every religion is equal for the government. The remarks, of course, have drawn a sharp response from other political parties. BJP's leader of opposition R. Ashoka accused Rai Reddy of belittling Hindu faith centers and demeaning Sanatan.
10: Islam is not a good thing. Islam is not a good thing. Islam is not a good thing. Islam is not a ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಏನದೋ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಶುರು ಹೋದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೋಡಿ ಕುರಾನ್ ಬರ್ತೀವಿರಲ್ಲ, ನಾನು ಇದು ಅಬ್ರಾಹಿಕ್ ರಿಲಿಜನ್, ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಗುರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಠವಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದರೆ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೇಕಾದ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಬ್ರಾಹಿಮಿಕ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂದರೆ ಅಬ್ರಾಹಿಮ್
11: ಏನು ತಪ್ಪೇನಿದೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು, ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಗುಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರರ್ಥ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಕೆಟ್ಟದಂತ ನಾನೇ ಹೇಳಿದೆ.
12: Is within the constitution, everyone has got his own right. Whatever he wants to say, they can say. It's his personal opinion, not of the party. As a party president, I only say all are equal for us. Religion has got nothing to do with the state and the government. Government doesn't sponsor any religion. It's purely personal.
13: Basavaraj Rai Reddy needs to understand that there is nobody who is perfect, but everybody needs to amend themselves according to the time, space and cause. Whereas Basavaraj Rai Reddy seems to be stuck in the 7th century to appease his voters. Remember, the Congress party, since it has come to power in 2023, they said, "We are for only for you, and because of you we have come to power," and as well as they allotted 10,000 crores. Now they are trying to appease one community overwhelmingly over the others.
8: आप किसी के लिए नफरत मन में ना रखें, यही धर्म बताता है. और कोई भी धर्म हो, वो इंसानियत का पैगाम देता है. इस्लाम को पढ़ाओगा, और जिन लोगों को इस्लाम के बारे में गलतफहमी है, उनको इस्लाम पढ़ना चाहिए. तो आप पढ़ोगे तो पता चलेगा. ये जो आजकल चल रहा है नफरत का खेल, इनके आका अमेरिका में जाके कुछ बोल रहे हैं, कनाडा में कुछ बोल रहे हैं, अगर ये हिंदुस्तान में बोलना शुरू करते हैं, माहौल सुधर जाएगा. माहौल तो इन्होंने बिगाड़ रखा है.
0: Slip into a short break. We will return with a ground report by my colleague Aditya Raj.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
2: वाह मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: अक्रॉस द कंट्री
2: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
0: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aur pure vermicelli, swadisht. सेहतमंद हर रोज
2: थ्री डेकेड्स ऑफ वॉचिंग द वर्ल्ड चेंज ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस दैट कुडंट वेट ऑफ टेलिंग द स्टोरीज दैट कुडंट बी इग्नोर्ड ऑफ होल्डिंग द लाइन When it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV. When it really matters.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे.
1: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV. When it really matters.
2: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज.

0: Its highest civilian honor on him. Remember, before Kyrgyzstan, the prime minister was in Uzbekistan. Oweisi took a dig at the BJP, saying that the country from which Babur came to India has now honored Prime Minister Modi. He also said that the Sangh needs to reflect on this, recalling the BJP and Sangh Parivar's frequent references to Babur. The remarks triggered a sharp response from the BJP. They called the honor a matter of pride for India and said that we do not know what logic is behind his sarcastic remark, but he must also understand that your ancestors massacred people in Telangana, but still you are getting elected here as an MP from Hyderabad.
1: मैं मुबारकबाद देता हूं मैं बीजेपी वालों को कि उस देश ने भी प्रधानमंत्री को अवार्ड दे दिया जहां से बाबर भारत को आए थे. फरगाना वैली उज़्बेकिस्तान में है. मुबारक हो आपको. माने अब जहां जाते हैं प्रधानमंत्री अवार्ड लेकर आते हैं. देखिए आप अब क्या बोल सकते हैं. मुबारकबाद आपको. इतनी गाली जो देते थे बाबर के नाम पे उसी देश वाले दे रहे हैं अवार्ड आपको. देखिए सोचना पड़ेगा संघ वालों को इस बारे में. हम उम्मीद करते कि संघ परिवार के लोग आरएसएस के चाहने वाले अब अपनी जबान पर बाबर का इस तरह नाम ले लेंगे.
2: ये हमारे लिए पूरे भारत के लिए गौरव की बात है. हम सब के लिए इस पे गर्व होना चाहिए. मोदी जी को इतने देशों ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया है कि गिनती करना उसके लिए. ये अपने आप में उनकी शख्सियत है.
3: मोदी जी को वर्ल्ड में जितने भी देश हैं 100% सबने अवार्ड दिया, तो किसी ने भी आश्चर्य लगा के लेना नहीं, क्योंकि मोदी जी उससे कई ज्यादा डिजर्व करते हैं. और मोदी जी सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, कहीं पर भी कोई अड़चन हो वर्ल्ड में कहीं पर भी, सबसे पहले पहुंचने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं.
0: All right, so this is a Babur jibe there at the BJP. With that, we'll sip into a short break. News and updates continue on the other side. Stay with us.
4: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
5: Hey, navigate me to the National Archery Club. What time is the medal ceremony?
6: The medal ceremony begins at 6:30 p.m.
7: Live Gen AI in the Kia Sorento. Thoughtful intelligence for the moments that matter.
8: Kia. Movement that inspires.
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात.
10: वाओ मामा, क्या स्वाद है.
11: अरे मेरे राजा.

आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। अ सेकंड चेंजेस एवरीथिंग, अ मिनट मूव्स अ नेशन, एन आवर बिकम्स हिस्ट्री। फॉर थ्री डेकेड्स NDTV has been there for the moments that were unstoppable, unmissable, unforgettable. Today, the moment is ours. NDTV 24/7 is now NDTV when it really matters. मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज। थ्री डेकेड्स ऑफ वॉचिंग द वर्ल्ड चेंज, asking the questions that couldn't wait.

0: ये कहानी है एक लड़के की, मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे इस लड़के की, जो 16 साल की उम्र में ही अहमदाबाद की गलियों से सीधा मुंबई की भीड़ में आ पहुंचा। एक छोटे से ट्रेडिंग बिजनेस को भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम्स में बदल दिया। और अपनी इस सोच को हकीकत में बदलने वाले इस शख्सियत का नाम है गौतम अदाणी।
1: इफ अ बॉय फ्रॉम अहमदाबाद कुड बिल्ड व्हाट स्टैंड्स हियर टुडे, देन देयर मस्ट बी 1000 मोर गौतम अदाणी सिंपली वेटिंग फॉर समवन टू नोटिस देम।
0: इसी सोच के साथ उन्होंने 24 जून को शुरू किया देश का सबसे बड़ा ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट, वंदे भारतम।

कमिटमेंट है वंदे भारतम का, देश के ग्रास रूट के सपनों को करोड़ों की सहायता देने का, और इस राष्ट्रीय धरोहर को पूरे वर्ष लगातार जारी रखने का। सोशल मीडिया पर वंदे भारतम के इंस्पायरिंग वीडियोस को 41 करोड़ से अधिक बार देखा गया और 82 करोड़ से अधिक इंप्रेशंस आए। तभी तो एक महीने में ही 26,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस आईं, वो भी इन विभिन्न कैटेगरीज में जो आज के भारत की हर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। 26,000 में से 200 इनोवेटर्स चुने गए, सिलेक्टेड फाइनलिस्ट्स अहमदाबाद पहुंचे। 9 अगस्त को अहमदाबाद के शांतिग्राम में एक शानदार बूट कैंप आयोजित हुआ। 10 से 13 अगस्त के बीच वंदे भारतम का स्टेज इनोवेशन के स्टार्स से जगमगा उठा। 20 दिग्गज मेंटर्स देने वाले हैं इस नई राष्ट्रीय धरोहर को आकार। इसी मंच से टॉप विनर्स को मिलेगी करोड़ों की प्राइज मनी। साथ ही हमारी स्पेशल कैटेगरीज वुमेन, रूरल, दिव्यांग, सस्टेनेबल को दी जाएगी स्पेशल प्राइज मनी भी। अगर आपका आइडिया नहीं बन सका हमारा भागीदार इस बार, तो निराश न होना, बस रजिस्ट्रेशन करो, जुड़ो और पाओ योग्य निवेश, मेंटर या अडानी ग्रुप का सहयोग। और हाँ, ऑडियंस भी हमारे पोर्टल पर जाकर इनोवेटर्स को वोट कर सकती हैं। और यदि आपका टॉप 5 का सिलेक्शन मेंटर्स के सिलेक्शन से मैच होता है, तो 3 लकी विनर्स को मिलेगा स्पेशल प्राइज।

Welcome to Vande Bharatam, an initiative by Gautam Adani. Commentors, मैं एक चीज सोच रहा था कि कुछ स्टार्टअप्स जन्म लेते हैं बिजनेस के लिए, कुछ स्टार्टअप्स जन्म लेते हैं जरूरत की वजह से, पर कुछ स्टार्टअप शायद ऐसे होते हैं जो लोगों के लिए एक गिफ्ट होते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनको उसकी बेहद ज़रूरत होती है और वो इनोवेशन उनकी ज़िंदगी को बदल देते हैं। उनकी इनोवेशन कुछ इसी तरह की है। हमारे जो पहले इनोवेटर्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो प्लीज़ वेलकम टॉर्चिट स्टार्टअप के फाउंडर मिस्टर हनी भक्त चंदानी।

0: प्रथमेश आप यहाँ पर, मैंने तो कहा था कि हनी भगचंदानी।
1: ये सब पर जैसे रेनबो से पहले धूप और बारिश आती है और फूल से पहले कलियाँ, वैसे फाउंडर से पहले मैं आ गया।
0: अरे आप आ गए, क्या बात है, कितनी प्यारी बात की इन्होंने,
2: बहुत बढ़िया।
0: सो वेलकम टू वंदे भारतम प्रथमेश।
1: थैंक यू सो मच सर।
0: आपको मैं दिख रहा हूँ?
1: हाँ, आप ज्योति मुझे सब कुछ डिस्क्राइब कर रही है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मेरे सामने जी तटानी सर हैं, और इधर उनके लेफ्ट में है पुनीत गुप्ता सर और अमन गुप्ता सर, और राइट में है स्वाति मैम और नितेश सर।
0: क्या बात है, और ये बताओ कि मैंने क्या पहन रखा है?
1: मैं आपको ये बता सकता हूँ, आप एक बार जजेस की जो चेयर है आप वहाँ पर जाइए, वो पूरा एरिया स्कैन करके बता सकती है।
0: ओके। मैं कैसा दिख रहा हूँ ये तो बता दो।
1: यस कैप्चरिंग।
3: एक मेजबान जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने बैंगनी जैकेट पहन रखी है और वह मंच के केंद्र में खड़ा है। उसके दाईं ओर 5-6 अन्य लोग सुनहरी कुर्सियों पर बैठे हैं।
0: क्या बात है,
3: पीछे की बड़ी स्क्रीन पर पेड़ों और घरों के साथ एक शांत ग्रामीण दृश्य दिख रहा है।
0: What an innovation, please. Give a round of applause.
2: So sweet. So nice.
0: अच्छा, तो आप ये बताओ कि हनी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे?
1: वो बिल्कुल आ रहे हैं सर। हनी भैया आ जाइए, वेलकम।
4: Good job, man. Very good.
0: क्या इनोवेशन है? I think so many of them जिनके पास में आईसाइट नहीं है,
5: yes.
0: वो कितने ग्रेटफुल होंगे आपकी इस इनोवेशन के लिए।
5: थैंक यू सर, उसके लिए हमको भगवान की दया से बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स मिल चुके हैं, और ऊपर वाले की वजह से हमने बहुत लाखों लाइफ को इम्पैक्ट भी किया
0: जी। और आज आप वंदे भारतम के मंच पर हैं, आपकी पिच रेडी है?
5: 100%
0: जी। तो आपके पास में है 3 मिनट का समय, और आपके चमकने का समय शुरू होता है अब।
5: ओके, सो मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं प्रथमेश से सुनना चाहूंगा कि आप, प्रथमेश आपका सपना क्या है, आप क्या बनना चाहते हो?
1: मेरा सपना एक आईएएस ऑफिसर बनना है, और आप सब लोग को पता है उसमें कितनी ज्यादा पढ़ाई होती है, ज्योति की वजह से मैं बहुत इंडिपेंडेंट बना हूँ और पढ़ाई बहुत आसानी से हो पाती है। पहले मेरे पास ये डिवाइस था सारथी, सो उससे मैं मार्केट लाइक शॉपिंग घूमने जा सकता था, पर अब ज्योति की हेल्प से मैं शॉपिंग कर भी लेता हूँ अब आराम से।
5: मेंटर्स नमस्ते, जिस तरीके से प्रथमेश का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, उसी तरीके से हमारे करोड़ों दिव्यांग भाई बहन के सपने हैं इंजीनियर बनना, टीचर बनना, एंटरप्रेन्योर बनना। वो सपनों के अपॉर्चुनिटी के बीच में बहुत सारे बैरियर्स आते हैं। मैं अपना एग्जांपल दूं, अगर मैं अपने ग्लासेस निकाल दूं तो मैं आप सबके चेहरे ध्यान से नहीं देख पाऊंगा, अच्छे से नहीं पढ़ पाऊंगा कि क्या लिखा हुआ है। जिस तरीके से चश्मे मुझे हेल्प करते हैं, उस तरीके से असिस्टिव डिवाइसेस हमारे दिव्यांग भाई बहनों को हेल्प करते हैं अपने काम को आत्मनिर्भरता के साथ करने में। और वहीं से शुरुआत हुई ज्योति एआई ग्लासेस की। अगर मैं मोबिलिटी डिवाइस की बात करूं तो 40,000 से 50,000 रुपए का डिवाइस था, हमने उसको भारत में बनाया 3,000 से 4,000 रुपए में।
4: Wow.
5: और ज्योति एआई ग्लासेस के थ्रू हमारे विजुअली इम्पैक्ट भाई बहन आपके सामने क्या हो रहा है ना सिर्फ वो देख सकते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट कि वो एजुकेशन लाइक कोई भी प्रिंटेड मटेरियल को पढ़ सकते हैं, वो भी 90 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में। और सबसे बड़ी बात कि इट्स अ गेम चेंजर फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। ज्योति एआई से आज 40,000 से ज़्यादा हमारे दिव्यांग भाई बहन पीएचडी कर रहे हैं, अपने एग्जाम्स खुद लिख रहे हैं। और हमारा सपना ये है, हम सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाए, हम सारे दिव्यांगताओं के लिए जैसे हियरिंग है, ऑटिज्म है, कम्युनिकेशन है, उन सब के लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एआई के थ्रू बनाएं। और सबसे बड़ी बात, मेरा मिशन ये है कि हम इंडिया को ग्लोबल हब बनाएं असिस्टिव टेक्नोलॉजी में। और मेरा विजन ये है कि हम 1 करोड़ लोगों तक पहुँचे, उसके लिए मेरा आस्क ये है कि हम 7 करोड़ के बदले 3% की इक्विटी हम ऑफर करते हैं, और साथ में हम एक सिर्फ कंपनी नहीं बना रहे, हम एक सुने भारत में ऐसा बना रहे हैं कि डिसेबिलिटी कोई सपने की लिमिट ना बने। हर किसी में दम है, हर किसी के अंदर टैलेंट है, हम सिर्फ एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें और साथ में मिलकर इंडिया को ग्लोबल हब बनाते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी में। जय हिंद।
4: अमेजिंग, वाओ,
6: फैंटास्टिक,
4: टू गुड, टू गुड। प्रथमेश, यू आर सो इंस्पायरिंग।
6: वेरी नाइस सर, गुड जॉब। ये जो असिस्टिव वाली टेक्नोलॉजी है, ये तो बहुत अलग है, ये तो मतलब इट कैन बी अ रेवोल्यूशन।
5: 100%, दैट्स व्हाई आई एम हियर, के हम साथ मिलके ये इनोवेशन से ग्लोबल कंपनीज को टक्कर दे सकते हैं।
7: तो ये आपका पूरा प्रोडक्ट आएगा चश्मे के साथ या अलग से इस पे चश्मे पे भी मैं अपने चश्मे पे लगा के यूज कर सकता हूँ?
5: जो आप बात करें सर वो हमारा सेकंड वर्जन था जो थी AI Pro, वो कोई भी ग्लासेस को AI ग्लासेस बना सकता है। और जो पृथ्वीश ने पहना वो अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है जो थी AI विजन ग्लासेस, कम्प्लीटली वायरलेस है।
7: क्या कॉस्ट रहेगा दोनों का?
5: इसका प्राइस 20,000 रुपये।
7: ओके,
5: और साथ में लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन के साथ, हमारा कोई हिडन चार्जेस नहीं है। हमारा यही मोटो है कि यार हम किस तरीके से हमारे लाखों करोड़ों दिव्यांग लोगों तक पहुंचे।
8: तो आवर सेल टुडे हैपेंस थ्रू ओनली आवर ओन प्लेटफॉर्म या आप दूसरे प्लेटफॉर्म?
5: नो, इट्स ऑल चैनल्स, लाइक आपको हमारे प्रोडक्ट सारे चैनल्स पे मिल जाएंगे, अमेजोन से लेके बाकी सारे बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिल जाएंगे। B2B2C भी बहुत सारे जो मेडिकल शॉप्स हैं, हमने ऑफलाइन भी एक्सपेंशन किया है, हमारे खुद के भी सेंटर्स हैं, हमने वहाँ पर भी एक्सपांड किया।
8: तो आज वंदे भारत हम के प्लेटफॉर्म से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है?
5: मैं आस्क हियर के 7 करोड़ से हम R&D में खर्चा करेंगे, हम मार्केटिंग में खर्चा करेंगे और अपना कैपेसिटी बिल्ड करेंगे और हम इसको इकोसिस्टम बनाएंगे।
4: well, सबसे पहले तो आई थिंक हमें इनको वंदे विंग्स देना चाहिए।
9: या, 100%।
4: या, पे है आपके पास इतना, दिस इज अ गेम चेंजर फॉर एवरीवन, दैट्स इनक्रेडिबल।
0: मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस, जो मेंटर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि आपको वंदे विंग्स मिलने चाहिए, और वंदे विंग्स का मतलब है कि आपको 10 दिन की मेंटरशिप मिलती है अदानी ग्रुप की तरफ से।
4: रत्नेश, आई रियली वांट टू गिव यू अ हग आल्सो, यू आर सो इंस्पिरेशनल,
1: सो नाइस टू मी।
4: थैंक यू मैम, थैंक यू।
0: हनी, कोई ऐसा बड़ा आपको मोमेंट याद है जहां पर आपको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा?
5: कोविड का जब लॉकडाउन आया तब हमारे जो एक ही प्रोडक्ट था तो वो सारा का सारा डंप हो गया ऑलमोस्ट 1.5 ईयर तक। और जितने भी पैसे थे, जितने भी हमने पैसे बचाए थे तो वो सारे खर्च हो गए और हमारे पास रनवे बचा नहीं। और जितनी भी टीम थी तो वो 40 लोगों की टीम में से हम 3 या 4 लोग बचे। तब मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी और लाइक मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट एक था कि यार मैं अच्छा कर रहा हूँ, भगवान कुछ ना कुछ, ऊपर वाला कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। माय फादर ऑलवेज बिलीव इन मी। एंड
0: आपने कहा कि एंगेजमेंट हो चुकी थी, उसके बाद शादी हुई कि नहीं हुई?
5: हुई हुई,
0: उन्हीं से हुई,
5: उन्हीं से हुई। और शी वाज माय लाइक बैकबोन, टू बी वेरी फ्रैंक। मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया है। लाइक अगर आप सिंगल होते हो तो कोई दिक्कत नहीं, चलो फेल हो गए। जब आपके पास एक और पर्सन है जो आपके ट्रस्ट पे आ रहा है एंड आपका कंपनी उस टाइम पे बंद हो रहा है, बट उसने बोला कि मुझे तुम पर विश्वास है एंड वो यकीन ने
0: आपको यहाँ तक ले आए। लेकिन इतने बड़े मंच पर आप आए, अपनी वाइफ को लेकर नहीं आए?
5: अरे शी ओ, दिल से आना चाहती थी बट नहीं आने थी।
0: लेकिन हमने जब उन्हें बुलाया दिल से तो वो यहाँ पर आ गई हैं। प्लीज प्लीज वेलकम हनी जी की वाइफ।
8: व्हाट अ सरप्राइज।
10: सो प्राउड ऑफ यू डूड।
0: Welcome, Ritu
5: ji. I am proud of you to have read my life.
0: Ritu ji, thank you so much. आपको हमारी तरफ से कि आपने इस innovation को इतना support किया कि आज ये वंदे भारतम के platform पर खड़ी है। आपकी आंखें नम हैं, कुछ कहना चाहती हैं आप?
10: Why he cried and he became emotional is because I am having a medical condition now. So, I'm suffering from stage 3 breast cancer.
4: Oh no.
10: My surgery is done. My chemos are done. I have recently got my 7th chemo. Only one chemo is left. The hairs that you see all are artificial. So, with that condition, if I can come and support him.
4: Hats off to you, Ritu. This is not easy at all. Both of you are literally changing lives.
8: Truly inspired.
4: Kitna kuch diya hai aapne.
10: Being myself a doctor, but now a patient, but most importantly, a proud wife.
0: And I'm very sure ki aapki jo positivity hai, sakaratmak soch hai, आपका जो सपोर्ट करने का जज्बा है, आई एम वेरी वेरी श्योर यू विल कम आउट ऑफ इट वेरी वेरी सून।
10: थैंक यू।
7: आई वांट टू ऐड समथिंग।
0: या प्लीज पुनीत।
7: तो मैं 1.5 साल पहले ही फादर बना हूँ और उसके बाद पता नहीं क्या बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशन मेरा अलग से निकल रहा है। प्रथमेश को देख के एक तो मैं उसका फैन हो गया, और प्रथमेश बहुत अच्छे लग रहे हो आप।
1: एंड
7: मैं आपको अभी बिजनेस देना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ 50 लाख के डिवाइसेज हम खरीद के अंडर प्रिविलेज बच्चों को डोनेट करें, तो मेरी तरफ से भी ये कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: I think that's what this platform is all about. मुझे लगता है ये वंदे भारत का प्लेटफॉर्म इसीलिए इतना खूबसूरत है, बिकॉज वी फील फॉर ईच वन ऑफ अस। तो कंग्रेचुलेशंस आपको, एंड थैंक यू सो मच पुनीत फॉर बीइंग सो काइंड। एंड ऑफ कोर्स

0: through a tap on the card. It's a RuPay prepaid card.
1: It's a prepaid card.
0: Yes.
1: Okay. You guys tie up with the universities, or is it that you issue the students the cards directly?
0: So we have a B2B line of business where we are directly partnering with universities in replacing their ID cards, library cards, and all sorts of other cards there.
2: Total, abhi kitni universities hain aapke paas?
0: Abhi to sign ek hua hai, and we have around 12 universities from Delhi Gurgaon region, Chandigarh region, Bombay and Bangalore in the pipeline.
2: But these will be government universities or private?
0: These are private universities.
3: What's the initial feedback? You have just one university right now.
0: Yeah.
3: Is there any? Because typically the sales cycle there are longer.
0: Yes.
3: So, what problem are facing?
0: One is they're skeptical because we do not have huge names backing us. The startup aaj hai, kal rahega ki nahi rahega. They want to adopt, they want to have the best in class technology, they want to put it out for the students. But when it comes to maybe trusting and sort of paying, most importantly, these are the blockers.
4: Internally, ek bar hum baat kar rahe the, hamari business team bata rahi thi ki AstroTalk mein hum college students ko kuch discount dein.
0: Haan.
4: एक पायलट करके देख लेंगे एस्ट्रोटॉक के साथ, अगर अच्छा लगेगा तो फिर मैं उसके बाद बात भी करूंगा.
0: हां, फॉर श्योर.
5: राजीव, इंडिया में लोगों को सेविंग्स अच्छी लगती है. हमें फ्री में धनिया मिर्ची लेने की आदत है, तो जब सेविंग्स मिलती है तो वी गो फॉर इट. कैश करो पे वी सी दैट ना, वी डू ओवर 10,000 करोड़ ऑफ सेल्स एवरी ईयर. सो वी हैव सीन दैट कि पीपल लाइक देयर सेविंग्स, एंड इन फैक्ट वी कैन हेल्प यू सॉल्व सम ऑफ योर ऑफर्स पीस बिकॉज़ वी ऑलरेडी वर्क विद सो मेनी पार्टनर्स. सो वी कैन हेल्प यू ऑन दैट फ्रंट फॉर श्योर.
3: तो मैं शुभारंभ देख सकता हूं, बट आई थिंक गिवन द करंट स्केल ऑफ द बिजनेस और जो वैलिडेशन यूनिवर्सिटी साइड से चाहिए, मुझे लगता है 36 करोड़ इज अ हाई वैल्यूएशन. तो मैं ऑफर देना चाहता हूँ, सो आई कैन लुक एट 1.5 सीआर फॉर 7.5% स्टेक इन द कंपनी.
0: दैट वुड बी अ चैलेंज मितेश जी, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव साइन टर्म शीट्स फ्रॉम टू ऑफ द अदर इन्वेस्टर्स हु आर गेटिंग इन. सो वी वुड रिक्वेस्ट यू कैन कम इन मे बी एट द वैल्यूएशन दैट वी आर रिक्वेस्टिंग.
3: माय कमिटमेंट कैन बी हायर एज वेल. I can come in at 20 crore pre-money. That's my offer.
1: We'd love to take your offer if we can have an idea about what can be the maximum amount you're planning to invest. If we can do the round in primary and secondary dealing together, where we maintain the valuation, where you come in with the amount and we give you an advisory equity to as a secondary share to get up to the valuation that you're talking of.
3: So we'll work out something. Deal.
0: Thank you so much.
1: Thank you so much.
3: ये लीजिए आपका शुभारंभ लिफाफा.
6: कंग्रेचुलेशंस गाइस.
3: कंग्रेचुलेशंस.
0: लाइफ टाइम स्टिल सर्किट.
1: थैंक यू सो मच.
5: वेल डन.
3: थैंक यू.
0: थैंक यू सो मच.
6: चलिए, आपकी पार्टनरशिप का शुभारंभ हुआ. मैनी कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू.
6: होप टू सी यू इन द फिनाले.
0: थैंक यू.
6: Endorse course. तो हमारे जो अगले इनोवेटर है ना, तो ये आ रहे हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से. प्लीज वेलकम डॉक्टर स्पेक्ट्रा. तैयार हैं पिच के साथ में आप लोग?
7: बिल्कुल तैयार हैं.
6: ओके, आपके चमकने का समय शुरू होता है.
8: Can you increase my audio here, please? Come in if you can hear me. Can you increase my audio? Yeah, I can't hear
9: that. आप बोल रहे हैं सबका?
7: क्या हुआ? Irritation हुआ आवाज से? जी, आप कल्पना करो इस तरह की आवाज आपको अगर 24 घंटे आपके कानों में बजे और रात में उसकी वजह से क्या आप सो पाओगे? क्या आप ऑफिस में काम में फोकस कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर सकते. इस प्रॉब्लम को बोलते हैं टिनाइटस. कम से कम 8 से 10 करोड़ लोगों को ये टिनाइटिस की समस्या है भारत में. इन समस्याओं की वजह से लोगों का सिर्फ स्लीप प्रॉब्लम ही नहीं, अटेंशन, कंसंट्रेशन, बच्चों का कॉन्फिडेंस, एजुकेशन, करियर ग्रोथ, ओवरऑल सोशलाइजेशन और लाइफस्टाइल इफेक्ट करती है. जी हाँ, इन्हीं समस्याओं के सोल्यूशन के लिए आया है डॉक्टर स्पेक्ट्रा वेलनेस. तो हम लोगों ने होम बेस्ड मेडिकल डिवाइसेस बनाई है. ये डिवाइसेस जो है वो इजी टू यूज है, कॉस्ट इफेक्टिव एंड नॉन इन्वेसिव, ड्रग फ्री और पोर्टेबल डिवाइसेस हैं, जिसे CDSCO, ISO सर्टिफिकेशंस प्राप्त है और पेटेंटेड भी है. हमारा सबसे हॉट प्रोडक्ट है टिनाइटिस, जो कि कानों में सीटी घंटी बजती है उसके लिए है हमारी टिनाइटिस रिलीफ मशीन. और हमारे इनोवेशंस को नेशनल लेवल पे भी बहुत अप्रिशिएशन मिला है.
10: पिछले 5 साल में हम 10,000 से

0: ज़्यादा पेशेंट्स की लाइफ चेंज कर चुके हैं। हमारे अभी 10 से ज़्यादा मेट्रो सिटीज़ में डिवाइसेस अवेलेबल है और अगले 2 साल के अंदर हम 1000 से ज़्यादा हॉस्पिटल, क्लिनिक और फार्मेसी के संग टाइप करके इसको फैलाना चाहते हैं। इसके लिए हम 10% इक्विटी के लिए 2 करोड़ का आस्क करते हैं।
1: हम आपसे सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं, आपकी मेंटरशिप, आपका गाइडेंस, आपका क्लिनिकल कोलैबोरेशन और ग्लोबलाइजेशन की आशा रखते हैं, ताकि हम लाखों करोड़ों लोगों तक इस इनोवेशन को पहुंचा के भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाकर देश में तरक्की कर सके।
2: क्या प्राइसिंग है इसकी, ये डिवाइस प्राइसिंग?
0: डिवाइस प्राइसिंग हमारा 25,000 से हम देते हैं 1 ईयर के फॉलोअप पैकेज के साथ।
3: आई थिंक टेनाइटिस एक बहुत एक एरिया है जहाँ पे इनोवेशन की बहुत जरूरत है। आई वुड लव टू कनेक्ट यू टू सम हॉस्पिटल ओनर्स, सो वी शैल कनेक्ट ऑन दैट।
1: थैंक यू, थैंक यू।
4: You know, I really like your passion. Yeah.
3: Good. Yeah, I think you should.
4: We should. Sure? Should, give that.
3: Should we do the? Yeah.
1: Thank you so much.
5: We'd love to mentor you more.
1: Thank you.
5: Thank you so much. Thank you. Congratulations.
0: Thank you.
5: Great meeting you.
6: Mentors, time to score. आप अपने अपने scores दे सकते हैं।
7: वंदे भारतम के मंच पर दिखे देश के कोने कोने से आए अनोखे आइडियाज। इनोवेटर्स ने अपने यूनिक आइडियाज और विजन से मेंटोर्स को किया प्रेरित।
8: सही टाइम पे एक भरोसेमंद कबाड़ी वाला मिलता ही नहीं, जिसके वजह से हम अपना कीमती कबाड़ कचरे में फेंक देते हैं। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है कबाड़ी मैन।
7: देहरादून की सनफॉक्स टेक्नोलॉजीज के पोर्टेबल ईसीजी स्पंदन।
9: स्पंदन ईसीजी एक ईसीजी मशीन नहीं है, ये कार्डियक केयर इकोसिस्टम है।
7: और पुणे के डेनोवो बायो इनोवेशंस के ऑटोमेटेड सूचरिंग सिस्टम स्मार्ट स्टिच ने मेंटोस को इंप्रेस किया।
10: हम बनाते हैं एडवांस इनोवेटिव सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट।
7: वहीं बरीपदा उड़ीसा से आए कैसवीटा प्राइवेट लिमिटेड के बायो सेल ग्लू बैंडेजेस और उन्हें मिले मेंटोर से वंदे विंग्स और 10 दिन की मेंटरशिप अदानी ग्रुप के साथ।
6: आज वंदे भारतम के इस कारवां में आप भी जुड़ गए। अगर किसी इनोवेटर के आइडिया ने आपको इम्प्रेस किया है तो आप उनके लिए वोट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट @vandebharatam.org और बाय स्कैनिंग द QR कोड ऑन योर स्क्रीन। आप ये सारे एपिसोड्स देख सकते हैं NDTV 24/7, NDTV इंडिया, NDTV प्रॉफिट और NDTV डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन ये सफर थमेगा नहीं, फिर मिलेंगे भारत के नए कल में। वेलकम संगा रेड्डी तेलंगाना से भौम्या इनोवेशंस के इनोवेटर दीपक रेड्डी एंड अमरेश जना।
11: आप अगर आज भौम्या पे इन्वेस्ट करेंगे तो आप सिर्फ एक कंपनी पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप भारत का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रहे।
12: लेट्स डू 2 crore एंड फॉर 20%। ओके, दैट्स आवर ऑफर टू यू।
13: सर, कैन वी डू इट लाइक 10% इक्विटी फॉर 2 crore?
14: Has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
15: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
16: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
15: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: देखिए नेविगेट मी टू द नेशनल आर्चरी क्लब। What time is the medal ceremony?
3: The medal ceremony begins at 6:30.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा प्योर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से
3: देश का टायर जेके टायर।
4: ऑक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग चार लोगों के पास है।
5: कुछ इससे भी अनोखा
4: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।
6: Across the country,
7: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: Dharmarth Seva Nyas conducting a Shuddhikaran ceremony at the ground after 3 days. So basically on the 8th, Mr. Kharge was there at the Ramlila Maidan, and 3 days later, some people from this Nyas turned up. Now the Congress has accused the BJP and RSS of being behind that act. They are saying that this Shri Ram Sene or whatever the name of the organization is only a front. It's the BJP and RSS who are acting from behind the scenes. And now the Congress party has sought a registration of an FIR, because Rahul Gandhi, remember, on a press conference that he did on Saturday, said that this is not just symptomatic of an anti-Dalit mindset, it's also a violation of the SC-ST Act, and that's why an FIR must be filed. But what actually happened was that in a plot twist, the Uttarakhand police has registered an FIR, but that FIR is against Rahul Gandhi. Why? Because a member of the Malmiki community, who was a part of the Shri Ram Sena group at the Ramlila Maidan in Haldwani, he has come out and he has accused the LOP of giving a casteist spin to what he claims was only a religious ritual. Now, this man, who was a part of that group that carried out the Shuddhikaran, says, I myself am a Dalit. I carried out this religious ritual. I carried out a purification ceremony and a havan only because the ground was left dirty after the rally, and also because some provocative slogans were raised there.
1: Ye SC-ST Act ke khilaaf ye kaam hai. Let me repeat here, it is a crime to do Shuddhikaran. No action has been taken. Ki hamari maang hai ki jaldi se jaldi jin logon ne Shuddhikaran kiya hai Uttarakhand mein, un par FIR lagu ho. Hindustan ke pradhan mantri hain, unke party ka chief keh raha hai कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, आरएसएस के लोगों ने शुद्धिकरण किया है।
2: शुद्धिकरण हमारा विषय था, वो ये विषय था कि वहां पर ज्यादा गंदगी थी, ठीक है, वहां गंदगी कितनी थी और बोतलें पड़ी हुई थी बियर की, दारू की, वहां दिलवाग के निशान थे, मांस बदड़ा था, तो उसके लिए हमने वहां सफाई अभियान करा था, वहां सफाई करी गई थी। और जैसे राहुल जी का बोलना है कि इन पर वो करा जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए, तो हम उसी विषय को लेकर आज कोतवाली आए हैं, जिससे कि हम राहुल गांधी जी के ऊपर FIR करना चाहते हैं, और आज हम हर दलित समाज के लोग आए हैं।
0: Now, this FIR against Rahul Gandhi has made the Congress go on a bigger offensive against not just the Uttarakhand government, the BJP government in Uttarakhand, but the BJP as a whole. The party is not backing down. In fact, today protests were held across Uttarakhand in multiple places across the state. Leaders of the Congress tried to get an FIR filed, and they have questioned the selective action by the police. They say that this is nothing more than a witch hunt against Rahul Gandhi, because he brought out in the open the caste mindset of the BJP.
3: भाई पहली तो बात कुछ अभी उन्होंने किया नहीं, अब राहुल जी के खिलाफ भी कर दिया तो साफ दिख रहा है। हमने ऑलरेडी आज के दिन हर कोतवाली में, उत्तराखंड की हर कोतवाली में, हम FIR दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो नहीं दर्ज करते हैं, हम कुछ और करेंगे। अब हम 7 तारीख को एक मेजर एजिटेशन करेंगे। बात ये है, चुनाव आ रहा है ना उत्तराखंड में, यूपी में और जगहों पर, ये सिर्फ वही पुरानी तकियानुसी बातें, अपनी गलतियां, अपनी खामियां, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए तो ऐसी चीज़ें कोशिश कर रहे हैं ये।
4: वहाँ पर कुछ दलित बंधु अपना वहाँ पर कार्य कर रहे, जो गंदगी हो गई थी उसको हटाकर, गंदगी मतलब किसी व्यक्ति के आने से गंदगी नहीं, जो गंदे चीज़ें पड़ी थी ऐसा उन्होंने कहा, तो उसके कारण वो लोग उस को वो कर रहे थे, पूजन पाठ कर रहे थे, और वो भी दलित थे, और इसको गलत मुद्दा बना के दलित और दूसरे जाति का, ये मैं समझता हूँ कांग्रेस को उचित नहीं है, और इस प्रकार की राजनीति से बचना चाहिए।
5: होना तो ये चाहिए था, जिन लोगों ने भारतीय संविधान का अपमान करते हुए भारत के कानून को चुनौती दी है, भारत में छुआछूत इस तरीके की चीज़ें बैन हैं, जिस व्यक्ति ने FIR की है वो दलित परिवार का हो सकता है, मगर वो भाजपा का एक्टिव मेंबर है, हो सकता है संघ से भी उसका संबंध हो।
6: हालांकि उन लोगों का भारतीय जनता पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, इन्होंने भी ये

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.
3: Hindustan mile, Hindustan se.
4: Desh ka tire, JK tire.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
8: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
9: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस।

0: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: अक्रॉस द कंट्री
2: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
0: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht. सेहतमंद हर रोज
3: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है वक्त तराशता है जिसे तो जाने क्या क्या ना करता है जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन ना बन जाए आराम के लिए नहीं ठहरता है जब तक लाजवाब ना बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है
2: थ्री डेकेड्स ऑफ वॉचिंग द वर्ल्ड चेंज Asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे।
4: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
5: देश का टायर जेके टायर।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।

0: spa state of mind with a Kohler spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler spa at home.
1: Electricity bill paid.
2: Really?
1: Your mobile recharge is done.
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to rupees 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.
3: Hindustan mile, Hindustan se.
4: Desh ka tire, JK tire.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा प्योर मसाला।
8: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।

0: पिछले वर्ष आपकी भारत यात्रा बहुत ही सफल रही और बहुत ही यादगार रही। हमने कई घंटे साथ बिताए और विशेष रूप से बिजनेस फोरम और एक प्रकार से बिजनेस वर्ल्ड का रशिया का हुज हु कहें उन सब को लेकर के आप आए और आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई और ज्यादा विस्तार देने का काम भी हमारी चर्चा में हुआ। और मुझे खुशी है कि जो आउटकम निकले हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी दोनों टीमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं और बड़ी गति के साथ काम कर रही हैं। ये हमारे लिए गहरे संतोष का विषय है कि हमारा सहयोग निरंतर नई ऊंचाइयों को और बढ़ रहा है और दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा। कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा। एक्सलेंसी, यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। पिछली बार भी जब हम मिले थे तब आपने विस्तार से सभी विषयों के बारे में मुझे अवगत किया था। जैसा कि आप जानते हैं, भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: I'd like to note with satisfaction the following thing, namely that the Russian-Indian relations continue to get strengthened on the basis of the principles of the special and privileged partnership. Distinguished Prime Minister, of course, this is aided by your special attention to the Russian-Indian relations and the business and kind relations, friendly relations that have been established between us, and I'm very grateful to you for that.
2: Now, the Prime Minister also met Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the SCO summit, where Prime Minister asserted India's push for a peaceful resolution. Meanwhile, Russian President Vladimir Putin underlined the growing strength of India-Russia partnership, especially in key areas such as defense. Here's a special report on that.
0: Endless war से end of war उसी दिशा में जाना ही होगा।
3: When Prime Minister Narendra Modi spoke the aforementioned words, India's message of peace spread across the world within seconds. With Russian President Vladimir Putin seated right in front of PM Modi, this was India's strongest message to end war in the Ukraine, a war that has dragged on for a longer time than the First World War.
4: Abhishek Kaur from NDTV. President Pezeshkian in the Iran readout says that and urges Prime Minister Modi to use his extensive contacts for peace and prosperity in the region. Could you actually elaborate on that in the context of Russia as well? You know, there's been a statement by Prime Minister Modi to end the endless war. What is India's position both in context of both the conflicts and what was discussed?
5: Not only did the Prime Minister emphasize the importance that we continue to attach to dialogue and diplomacy as being essential in resolving any differences, but also his emphasis on really the need

0: by the water and also from the air. And then they sending some rescue personnel just going to the core site to do the search. But very sadly, that so far we haven't found any survivors.
1: Let's now talk about Rasuwa, one of the worst hit districts in Nepal's devastating floods. What was once bustling market is now buried under tons of mud, rock and debris. Roads have bridges have been wiped out and homes have disappeared. More than 500 shops on the main market have either been washed away or buried. NDTV has traveled through some of the most devastated parts of Rasuwa. Take a look at these reports.
2: The continuous rescue work is on in Rasuwa district, and well, this was the area which has faced maximum destruction after the flash floods. We are at Dhunche helipad, where the army helicopters and administration and Nepalese government helicopters are constantly sorting from this helipad, taking all the basic amenities like generators, food articles, medicines continuously towards Timur Bazaar and Shapru. Well, that's the area which has been completely cut off from this side of Nepal. Since yesterday, this rescue operation has been on at a war footing. And right now behind me, constantly the helicopters of the army and the government are sorting and taking whatever is required right now to the China-Tibet border. You can see this is the war footing rescue operation which is on in this area of Nepal. And right now there are so many people stranded there for last so many days, 5 days counting, and they have spent their time. We believe the army rescue workers who had reached there managed their food and water, and now they are being ferried to Dhunche. They will be taken to Kathmandu for their further treatment, and if required, getting their relatives to Kathmandu. So, well, that's the priority. People who are stranded in Shapru and Timur Bazaar, they should be ferried first, and after they have after the people who were rescued have come out of the helicopter, you can see the other amenities, other groceries, everything which is required in that side of Nepal is being ferried back.
3: अब आगे आपको काठमांडू पहुंचाने के लिए व्यवस्था की जा रही है, और आप बता रहे थे कि वहां आप सेना के साथ थे, सुरक्षित रखे गए थे, और जैसी सुविधा हुई आपको यहां पहुंचाया गया आज. आप इस दौरान आपने इन दिनों में वहां क्या देखा है? शाहपुर बाजार में रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है, क्या आप इस वक्त बता सकते हैं? आपने क्या देखा?
4: रेस्क्यू करने के लिए बहुत डेंजर है. उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके रेस्क्यू करा है, क्योंकि नीचे बहुत डेंजर है, जाने से बहुत डर लगता है. इंसान लोग हम इस 6 दिनों में बिना लायक ही बस जब रात हो जाएगा ऊपर जाएगा बैठेगा, जब सुबह आ जाएगा दिख जाएगा किस दिन है.
3: तो नीचे जहाँ रेस्क्यू चल रहा है वहाँ पे बॉडीज हैं, वहाँ पर क्या देखा है आपने, किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है?
4: सब ठीक चल रहा है, चलना हम लोगों ने जितने सर्दी बॉडी निकल रहा है, क्योंकि वो बहुत डेंजर है. मूट है ना, बहुत गीला है, माटा माटे को बहुत गीला है ना, तो जाने से बहुत खतरनाक है, बहुत तकलीफ होता है. उन लोगों को तकलीफ हो तो भी जाके बॉडी उठा के लेता है.
1: Now, NDTV's Prabhakar has filed these ground reports from the bank of the Trishuli River, where there is devastation and was also one of the worst affected areas.
5: For last 4 days, we have been showing you the devastation which this Trishuli River has caused, especially in the town of Trishuli. We have revisited town of Trishuli now after 4 days to take stock of the situation. I am right now standing in between the Trishuli town, which was completely almost washed away by the massive flash flood which Nepal witnessed. And the place where I'm standing is the heap of silt by the river. You can see this was supposed to be a main highway. Now the river has deposited the silt over here, and I'm standing right on that, on the top of that. And the administration, the Nepal government actually has started a mass level, full-fledged restoration operation, basically, especially to restore the roads which have been completely wiped away. You can, if I could show you the buildings out here, till second to third floor, the water level had reached up to second and third floor, and you can see the silt deposition on the second and third floor of the building. That means that water was flowing at that level. So you can well imagine the kind of devastation this water would have caused. Now you can see this was supposed to be the main road. You can see the JCBs and the proclaims over there working day in and day and night. So the Public Works Department of the Government of Nepal has started a massive restoration work, actually, first to ensure that the roads are made motorable, and then the other damaged structures would be taken care of, as in the houses and other structures which have been completely wiped off. Now, a very interesting fact about this Tshuli market, this Tshuli town, is that almost 400 to 500 Indian families were staying here. They were running the local businesses, right from the pan shops to the clothes shops to the kirana stores. They were all working here, and they're all Indian families settled here working in Tshuli. If I could just show you the choppers flying over here. So these are the choppers who are actually, I can show you both the two choppers over there. So these choppers are not only carrying relief material to the stranded area where the people are still stuck, but also carrying back those stuck people, those stranded people, and also dead bodies if found any. 700 to 800 people alone died from this Tshuli town only. This was one of the most devastated town and most affected town from this flash flood which had come to Nepal. But the good news is that the government here is now out on the streets trying to restore, trying to rehabilitate, and especially the trying to control the damage which was done here, especially the roads, so that the roads are motorable, and then the other amenities or other help, it would be easy for them to reach these kind of places. From Tshuli in Nepal, this is Prabhakar Kumar for NDTV.
1: Now, people from the far and wide are coming to help those affected by the floods in Nepal. A 20-member team from an organization called Hemkund Foundation has reached Navakot. My colleague Ranveer has sent us this ground report. Take a look.
6: विनाश के बाद जो राहत पहुंचाई जाती है वो कितना मुश्किल काम है, जरा उस काम को समझने के लिए तस्वीर देखिए। ये बिदुर इलाका है, और बिदुर इलाके में यहाँ पर तमाम सारे लोग घरों के अंदर जो सिल्ट है उस सिल्ट को हटाने की कोशिश में लगे हैं। उस सिल्ट को हटा करके जो बचा कुचा सामान है उसको निकाल कर जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनको कुछ राहत पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तमाम सारे लोग हैं जो यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं। यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब से आए हैं, जो कि बहुत बड़े गुरुद्वारे के लिए जाना जाता है, हेमकुंड साहिब चमोली ज़िले में, वहाँ से आए हैं। मैं आपको ज़रा पीछे लेकर के चलता हूँ, दिखाता हूँ कि यहाँ हालत अभी कैसी है कि चल पाना मुश्किल, और इस स्थिति में भी यहाँ पहुँच करके लोगों को मदद पहुँचाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि ट्रक से आए और ट्रक से आकर के कैसे यहाँ लोगों को मदद देने का काम किया जा रहा है। ज़रा इस तस्वीर को दिखाते हैं, सामने देखिए यहाँ पर कैसे बोरे में से सामान निकाला जा रहा है, और बोरे से सामान निकाल करके ये लोग जो बचा हुआ सामान है वो सामान पहुँचा रहे हैं। तो इस तरह से जो रेस्क्यू का काम है वो काम आगे बढ़ाया जा रहा है, और इस काम को करने में जो हेमकुंड फाउंडेशन है उसके लोग आगे आए हैं। ये तमाम सारे जितने भी आप सिख लोगों को देख रहे हैं, ये सब उसी हेमकुंड फाउंडेशन के लोग हैं, और लगातार सुबह से लेकर रात तक इसी तरह से लोगों को मदद कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, उस घर में सामने जहाँ से सामान निकाला गया है उस घर में किसी तरह सीढ़ी लगाई गई, सीढ़ी लगा करके ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ का सामान बच गया, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों जगह पे आप देखिए कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन छत पे जो कमरा था वहाँ थोड़े बहुत सामान बच गए हैं, जिसमें बर्तन है, घर का कुछ और सामान है, वो सब निकाला जा रहा है। और स्थिति ये है, आप लोग कब से हैं यहाँ पे?
7: दो दिन हो गए हमें।
6: दो दिन? आप लोग हेमकुंड साहिब से आए हैं?
7: हेमकुंड फाउंडेशन दिल्ली से।
6: दिल्ली से, तो वहाँ से आकर के यहाँ पे रिलीफ का काम, कितने लोग हैं आप लोग?
7: अभी हम लोग 20-22 लोग।
6: 20-22, और वहाँ से कुछ खाने पीने का भी सामान लेकर के?
7: एयर कार्गो में सारा सामान
6: है। एयर कार्गो से?
7: बिकॉज़ रोड से डिफिकल्टी होती है ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, सो एयर कार्गो से सारा सामान।
6: तो एयर कार्गो से राहत का सामान आया, और उसके बाद ये लोग वॉलंटियर्स के तौर पर यहाँ पहुँचे, और देखिए किस तरह से चेहरे पर मुस्कुराहट है तमाम सारी मुश्किलों के बावजूद भी, और ये सारे लोगों को मदद पहुँचा रहे हैं, ताकि जो उनकी ज़िंदगी में मुश्किल है उस मुश्किल के बीच में उनके घर का जो थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ है वो थोड़ा बहुत सामान उन्हें मिले तो शायद एक छोटी सी राहत उन्हें मुहैया कराई जा सके।
1: And with that, it's time for us to slip into a quick break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.

0: Hello and welcome. You're watching NDTV with me, Tanisha Awasthi. Before we get to the big stories, here's a quick check of the headlines. Hugs and handshakes in Bishkek as Prime Minister Modi and Putin meet on sidelines of SCO summit. Prime Minister bats for peace, says time to go from endless war to end of war. Putin, meanwhile, hails ties with India. Prime Minister Modi also meets Iran's President Pezeshkian, first meeting since West Asia conflict. Prime Minister raises seafarer's death. India and Armenia also hold talks in Bishkek. Prime Minister Modi hails 7.8% GDP growth, calls it a Herculean feat. He says doomers doomed, India bloomed, as he calls the GDP growth exemplary. Nepal's death toll rises to 903. Over 4,200 are still missing. Rescuers are struggling to reach those still stranded amid intermittent rain, swollen rivers and damaged roads and bridges as well. NDTV is reporting from Ground Zero. Delhi rape horror case comes to light. 16-year-old gang raped by bus driver and conductor, both accused arrested. Delhi woman's body takes cognizance, seeks an immediate action. Starting first up with the top story, Prime Minister Narendra Modi met with the Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the SCO summit. During the meeting, Prime Minister Modi said that India advocates for resolving our problems peacefully, which is necessary for all of humanity. Prime Minister Modi also told Putin that every day of war sets humanity back and that we must work towards ending hostilities. India has maintained its position on Russia's war in Ukraine and has consistently called for dialogue and diplomacy to end the conflict. Meanwhile, Russian President Vladimir Putin said the ties between Russia and India were continuing to grow stronger and that Russia remains one of India's key strategic partners, especially in the defense and energy sectors.
1: मुझे बहुत ही खुशी हो रही है. पिछले वर्ष आपकी भारत यात्रा बहुत ही सफल रही और बहुत ही यादगार रही. हमने कई घंटे साथ बिताए और विशेष रूप से बिजनेस फोरम और एक प्रकार से बिजनेस वर्ल्ड का रशिया का हुज हु कहे उन सब को लेकर के आप आए और आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई और ज्यादा विस्तार देने का काम भी हमारी चर्चा में हुआ और मुझे खुशी है कि जो आउटकम निकले हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी दोनों टीमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं और बड़ी गति के साथ काम कर रही हैं. यह हमारे लिए गहरे संतोष का विषय है कि हमारा सहयोग निरंतर नई ऊंचाइयों को और बढ़ रहा है और दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं. राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा. कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है. सभी भारतवासी भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं. आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा. एक्सलेंसी, यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं. पिछली बार भी जब हम मिले थे तब आपने विस्तार से सभी विषयों के बारे में मुझे अवगत किया था. जैसा कि आप जानते हैं, भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा. युद्ध में बिताया

0: has sent us this ground report. Take a look.
1: विनाश के बाद जो राहत पहुंचाई जाती है वो कितना मुश्किल काम है, ज़रा उस काम को समझने के लिए तस्वीर देखिए। ये बिदुर इलाका है और बिदुर इलाके में यहाँ पर तमाम सारे लोग घरों के अंदर जो सिल्ट है उस सिल्ट को हटाने की कोशिश में लगे हैं। उस सिल्ट को हटा करके जो बचा कुचा सामान है उसको निकाल कर जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनको कुछ राहत पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तमाम सारे लोग हैं जो यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं। यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब से आए हैं, जो कि बहुत बड़े गुरुद्वारे के लिए जाना जाता है हेमकुंड साहिब, चमोली ज़िले में वहाँ से आए हैं। मैं आपको ज़रा पीछे लेकर के चलता हूँ, दिखाता हूँ कि यहाँ हालत अभी कैसी है कि चल पाना मुश्किल और इस स्थिति में भी यहाँ पहुँच करके लोगों को मदद पहुँचाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि ट्रक से आए और ट्रक से आकर के कैसे यहाँ लोगों को मदद देने का काम किया जा रहा है। ज़रा इस तस्वीर को दिखाते हैं, सामने देखिए यहाँ पर कैसे बोरे में से सामान निकाला जा रहा है और बोरे से सामान निकाल करके ये लोग जो बचा हुआ सामान है वो सामान पहुँचा रहे हैं। तो इस तरह से जो रेस्क्यू का काम है वो काम आगे बढ़ाया जा रहा है और इस काम को करने में जो हेमकुंड फाउंडेशन है उसके लोग आगे आए हैं। ये तमाम सारे जितने भी आप सिख लोगों को देख रहे हैं ये सब उसी हेमकुंड फाउंडेशन के लोग हैं और लगातार सुबह से लेकर रात तक इसी तरह से लोगों को मदद कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए उस घर में सामने जहाँ से सामान निकाला गया है उस घर में किसी तरह सीढ़ी लगाई गई, सीढ़ी लगा करके ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ का सामान बच गया, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों जगह पे आप देखिए कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन छत पे जो कमरा था वहाँ थोड़े बहुत सामान बच गए हैं जिसमें बर्तन है, घर का कुछ और सामान है, वो सब निकाला जा रहा है। और स्थिति ये है, आप लोग कब से हैं यहाँ पे?
2: दो दिन हो गए हमें।
1: दो दिन? आप लोग हेमकुंड साहिब से आए हैं?
2: हेमकुंड फाउंडेशन दिल्ली से।
1: दिल्ली से, तो वहाँ से आकर के यहाँ पे रिलीफ का काम, कितने लोग हैं आप लोग?
2: अभी हम लोग 20-22 लोग।
1: 20-22? और वहाँ से कुछ खाने पीने का भी सामान लेकर के?
2: एयर कार्गो में सारा सामान है।
1: एयर कार्गो से?
2: बिकॉज़ रोड से डिफिकल्टी होती है ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, सो एयर कार्गो से सारा सामान।
1: तो एयर कार्गो से राहत का सामान आया और उसके बाद ये लोग वॉलंटियर्स के तौर पर यहाँ पहुँचे और देखिए किस तरह से चेहरे पर मुस्कुराहट है तमाम सारी मुश्किलों के बावजूद भी, और ये सारे लोगों को मदद पहुँचा रहे हैं ताकि जो उनकी ज़िंदगी में मुश्किल है उस मुश्किल के बीच में उनके घर का जो थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ है वो थोड़ा बहुत सामान उन्हें मिले तो शायद एक छोटी सी राहत उन्हें मुहैया कराई जा सके।
0: And with that, it's time for us to slip into a quick break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.
3: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: also dead bodies if found any. 700 to 800 people alone died from this Trishuli town only. This was one of the most devastated town and most affected town from this flash flood which had come to Nepal. But the good news is that the government here is now out on the streets trying to restore, trying to rehabilitate, and especially the trying to control the damage which was done here, especially the roads, so that the roads are motorable, and then the other amenities or other help, it would be easy for them to reach these kind of places. From Trishuli in Nepal, this is Prabhakar Kumar for NDTV.
1: Now, people from the far and wide are coming to help those affected by the floods in Nepal. A 20-member team from an organization called Hemkund Foundation has reached Navakot. My colleague Ranveer has sent us this ground report. Take a look.
2: विनाश के बाद जो राहत पहुंचाई जाती है वो कितना मुश्किल काम है, जरा उस काम को समझने के लिए तस्वीर देखिए। ये बिदुर इलाका है और बिदुर इलाके में यहाँ पर तमाम सारे लोग घरों के अंदर जो सिल्ट है उस सिल्ट को हटाने की कोशिश में लगे हैं। उस सिल्ट को हटा करके जो बचा कुचा सामान है उसको निकाल कर जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनको कुछ राहत पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तमाम सारे लोग हैं जो यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं। यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब से आए हैं, जो कि बहुत बड़े गुरुद्वारे के लिए जाना जाता है। हेमकुंड साहिब चमोली ज़िले में, वहाँ से आए हैं। मैं आपको ज़रा पीछे लेकर के चलता हूँ, दिखाता हूँ कि यहाँ हालत अभी कैसी है कि चल पाना मुश्किल, और इस स्थिति में भी यहाँ पहुँच करके लोगों को मदद पहुँचाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि ट्रक से आए और ट्रक से आकर के कैसे यहाँ लोगों को मदद देने का काम किया जा रहा है। ज़रा इस तस्वीर को दिखाते हैं, सामने देखिए यहाँ पर कैसे बोरे में से सामान निकाला जा रहा है, और बोरे से सामान निकाल करके ये लोग जो बचा हुआ सामान है वो सामान पहुँचा रहे हैं। तो इस तरह से जो रेस्क्यू का काम है वो काम आगे बढ़ाया जा रहा है, और इस काम को करने में जो हेमकुंड फाउंडेशन है उसके लोग आगे आए हैं। ये तमाम सारे जितने भी आप सिख लोगों को देख रहे हैं, ये सब उसी हेमकुंड फाउंडेशन के लोग हैं, और लगातार सुबह से लेकर रात तक इसी तरह से लोगों को मदद कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, उस घर में सामने जहाँ से सामान निकाला गया है उस घर में किसी तरह सीढ़ी लगाई गई। सीढ़ी लगा करके ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ का सामान बच गया, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों जगह पे आप देखिए कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन छत पे जो कमरा था वहाँ थोड़े बहुत सामान बच गए हैं, जिसमें बर्तन है, घर का कुछ और सामान है, वो सब निकाला जा रहा है। और स्थिति ये है, आप लोग कब से हैं यहाँ पे?
3: दो दिन हो गए हमें।
2: दो दिन? आप लोग हेमकुंड साहिब से आए हैं?
3: हेमकुंड फाउंडेशन दिल्ली से।
2: दिल्ली से, तो वहाँ से आकर के यहाँ पे रिलीफ का काम, कितने लोग हैं आप लोग?
3: अभी हम लोग 20-22 लोग।
2: 20-22? और वहाँ से कुछ खाने पीने का भी सामान लेकर के?
3: एयर कार्गो में सारा सामान है।
2: एयर कार्गो
3: से? बिकॉज़ रोड से डिफिकल्टी होती है ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, सो एयर कार्गो से सारा सामान।
2: तो एयर कार्गो से राहत का सामान आया, और उसके बाद ये लोग वॉलंटियर्स के तौर पर यहाँ पहुँचे, और देखिए किस तरह से चेहरे पर मुस्कुराहट है तमाम सारी मुश्किलों के बावजूद भी, और ये सारे लोग लोगों को मदद पहुँचा रहे हैं, ताकि जो उनकी ज़िंदगी में मुश्किल है उस मुश्किल के बीच में उनके घर का जो थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ है वो थोड़ा बहुत सामान उन्हें मिले, तो शायद एक छोटी सी राहत उन्हें मुहैया कराई जा सके।
1: And with that, it's time for us to slip into a quick break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.

0: में लगे हैं, उस सिल्ट को हटा करके जो बचा कुचा सामान है उसको निकाल कर जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनको कुछ राहत पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तमाम सारे लोग हैं जो यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं। यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब से आए हैं, जो कि बहुत बड़े गुरुद्वारे के लिए जाना जाता है, हेमकुंड साहिब चमोली ज़िले में, वहाँ से आए हैं। मैं आपको ज़रा पीछे लेकर के चलता हूँ, दिखाता हूँ कि यहाँ हालत अभी कैसी है कि चल पाना मुश्किल, और इस स्थिति में भी यहाँ पहुँच करके लोगों को मदद पहुँचाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि ट्रक से आए और ट्रक से आकर के कैसे यहाँ लोगों को मदद देने का काम किया जा रहा है। ज़रा इस तस्वीर को दिखाते हैं, सामने देखिए यहाँ पर कैसे बोरे में से सामान निकाला जा रहा है, और बोरे से सामान निकाल करके ये लोग जो बचा हुआ सामान है वो सामान पहुँचा रहे हैं। तो इस तरह से जो रेस्क्यू का काम है वो काम आगे बढ़ाया जा रहा है, और इस काम को करने में जो हेमकुंड फाउंडेशन है उसके लोग आगे आए हैं। ये तमाम सारे जितने भी आप सिख लोगों को देख रहे हैं, ये सब उसी हेमकुंड फाउंडेशन के लोग हैं, और लगातार सुबह से लेकर रात तक इसी तरह से लोगों को मदद कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, उस घर में सामने जहाँ से सामान निकाला गया है उस घर में किसी तरह सीढ़ी लगाई गई, सीढ़ी लगा करके ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ का सामान बच गया, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों जगह पे आप देखिए कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन छत पे जो कमरा था वहाँ थोड़े बहुत सामान बच गए हैं, जिसमें बर्तन है, घर का कुछ और सामान है, वो सब निकाला जा रहा है। और स्थिति ये है, आप लोग कब से हैं यहाँ पे?
1: दो दिन हो गए हमें।
0: दो दिन? आप लोग हेमकुंड साहिब से आए हैं?
1: हेमकुंड फाउंडेशन दिल्ली से।
0: दिल्ली से, तो वहाँ से आकर के यहाँ पे रिलीफ का काम, कितने लोग हैं आप लोग?
1: अभी हम लोग 20-22 लोग।
0: 20-22? और वहाँ से कुछ खाने पीने का भी सामान लेकर के?
1: एयर कार्गो में सारा सामान है।
0: एयर कार्गो से?
1: बिकॉज़ रोड से डिफिकल्टी होती है ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, सो एयर कार्गो से सारा सामान।
0: तो एयर कार्गो से राहत का सामान आया, और उसके बाद ये लोग वॉलंटियर्स के तौर पर यहाँ पहुँचे, और देखिए किस तरह से चेहरे पर मुस्कुराहट है तमाम सारी मुश्किलों के बावजूद भी, और ये सारे लोग लोगों को मदद पहुँचा रहे हैं, ताकि जो उनकी ज़िंदगी में मुश्किल है उस मुश्किल के बीच में उनके घर का जो थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ है वो थोड़ा बहुत सामान उन्हें मिले, तो शायद एक छोटी सी राहत उन्हें मुहैया कराई जा सके।
2: And with that, it's time for us to slip into a quick break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.
3: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: Welcome. You're watching News Night with me, Raisha Sehgal. And the story that matters tonight is from Kyrgyzstan. The big Bishkek-born homie between Prime Minister Narendra Modi and the Russian President Vladimir Putin. But Prime Minister Modi has said that this is not the era of war and it's time to move on from endless war to end of war. Lots more lined up, but first, the headlines. Hugs and handshake in Bishkek as Prime Minister Modi and the Russian President meet on sidelines of the SCO summit. Prime Minister bats for peace, says time to go from endless war to end of war. Putin hails ties with India. Prime Minister Modi also meets Iranian President Masoud Pezeshkian. First meet since West Asia conflict. Prime Minister raises seafarers' deaths. India and Armenia also hold talks in Bishkek. Prime Minister Modi hails 7.8% GDP growth, calls it a Herculean feat. He says doomsayers doomed. India bloomed, as he calls GDP growth exemplary. Nepal's death toll rises to 903, over 4,200 still missing. Rescuers struggle to reach those still stranded amid intermittent rain, swollen rivers and damaged roads and bridges. NDTV reports from Ground Zero. Delhi rape horror, 16-year-old gang raped by bus driver and conductor, both accused arrested. Delhi woman's body takes cognizance, seeks immediate action. Well, Prime Minister Narendra Modi, just a short while ago, met with the Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the SCO summit. Now, during the meet, Prime Minister Modi said that India advocates for resolving all problems peacefully, while it is also necessary for all of humanity. Prime Minister Modi told the Russian President Vladimir Putin that every day of war sets humanity back, and we must work towards ending hostilities. India has maintained a cautious position on Russia's war in Ukraine and has consistently called for dialogue and diplomacy to end the conflict. Meanwhile, Russian President Vladimir Putin said that ties between Russia and India are continuing to grow stronger and that Russia remains one of India's key strategic partners, especially in the defense and energy sectors.
1: मुझे बहुत ही खुशी हो रही है पिछले वर्ष आपकी भारत यात्रा बहुत ही सफल रही और बहुत ही यादगार रही हमने कई घंटे साथ बिताए और विशेष रूप से बिजनेस फोरम और एक प्रकार से बिजनेस वर्ल्ड का रशिया का हुजू कहें उन सब को लेकर के आप आए और आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई और ज्यादा विस्तार देने का काम भी हमारी चर्चा में हुआ और मुझे खुशी है कि जो आउटकम निकले हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी दोनों टीमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं और बड़ी गति के साथ काम कर रही हैं यह हमारे लिए गहरे संतोष का विषय है कि हमारा सहयोग निरंतर नई ऊंचाइयों को और बढ़ रहा है और दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है सभी भारतवासी भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद

0: शाहपुर बाजार में रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है, क्या आप इस वक्त बता सकते हैं, आपने क्या देखा?
1: रेस्क्यू करने के लिए बहुत डेंजर है, उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके रेस्क्यू करा है क्योंकि नीचे बहुत डेंजर है, जाने से बहुत डर लगता है इंसान लोग। हम इस 6 दिनों में बिना लाइट ही बस, जब रात हो जाएगा ऊपर जाएगा बैठेगा, जब सुबह हो जाएगा दिख जाएगा कुछ भी नहीं।
0: नीचे जहाँ रेस्क्यू चल रहा है वहाँ पे बॉडीज हैं, वहाँ पर क्या देखा है आपने, किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है?
1: सब ठीक चल रहा है, चलना हम लोगों ने जितने सर्दी बॉडी निकल रहा है क्योंकि वो बहुत डेंजर है, मूट है ना, बहुत गीला है, माटा माटा बहुत गीला है ना, तो जाने से बहुत खतरनाक है, बहुत तकलीफ होता है उन लोगों को, तकलीफ हो तो भी जाके बॉडी उठा के लेता है।
2: Now, NDTV's Prabhakar has filed these ground reports from the bank of the Trishuli River where there is devastation and was also one of the worst affected areas.
3: For last 4 days, we have been showing you the devastation which this Trishuli River has caused, especially in the town of Trishuli. We have revisited town of Trishuli now after 4 days to see, to take stock of the situation. I am right now standing in between the Trishuli town, which was completely almost washed away by the massive flash flood which Nepal witnessed. And the place where I'm standing is the heap of silt by the river. You can see this was supposed to be a main highway. Now the river has deposited the silt over here, and I'm standing right on that, on the top of that. And the administration, the Nepal government actually has started a mass level, full-fledged restoration operation, basically, especially to restore the roads which have been completely wiped away. You can, if I could show you the buildings out here, till second to third floor, the water level had reached up to second and third floor, and you can see the silt deposition on the second and third floor of the building. That means that water was flowing at that level. So you can well imagine the kind of devastation this water would have caused. Now you can see this was supposed to be the main road. You can see the JCBs and the proclaims over there working day in and day and night. So the Public Works Department of the Government of Nepal has started a massive restoration work, actually, first to ensure that the roads are made motorable, and then the other damaged structures would be taken care of, as in the houses and other structures which have been completely wiped off. Now, a very interesting fact about the Trishuli market, the Trishuli town, is that almost 400 to 500 Indian families were staying here. They were running the local businesses, right from the pan shops to the clothes shops to the kirana stores. They were all working here, and they're all Indian families settled here working in Trishuli. If I could just show you the choppers flying over here. So these are the choppers who are actually, I can show you both the two choppers over there. So these choppers are not only carrying relief material to the stranded area where the people are still stuck, but also carrying back those stuck people, those stranded people, and also dead bodies if found any. 700 to 800 people alone died from this Trishuli town only. This was one of the most devastated town and most affected town from this flash flood which had come to Nepal. But the good news is that the government here is now out on the streets trying to restore, trying to rehabilitate, and especially the trying to control the damage which was done here, especially the roads, so that the roads are motorable, and then the other amenities or other help, it would be easy for them to reach these kind of places. From Trishuli in Nepal, this is Prabhakar Kumar for NDTV.
2: Now, people from the far and wide are coming to help those affected by the floods in Nepal. A 20-member team from an organization called Hemkund Foundation has reached Navakot. My Ranveer, my colleague Ranveer has sent us this ground report. Take a look.
4: विनाश के बाद जो राहत पहुंचाई जाती है वो कितना मुश्किल काम है, ज़रा उस काम को समझने के लिए तस्वीर देखिए। ये बिदुर इलाका है, और बिदुर इलाके में यहाँ पर तमाम सारे लोग घरों के अंदर जो सिल्ट है उस सिल्ट को हटाने की कोशिश में लगे हैं। उस सिल्ट को हटा करके जो बचा कुचा सामान है उसको निकाल कर जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनको कुछ राहत पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तमाम सारे लोग हैं जो यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं। यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब से आए हैं, जो कि बहुत बड़े गुरुद्वारे के लिए जाना जाता है हेमकुंड साहिब चमोली ज़िले में। वहाँ से आए हैं। मैं आपको ज़रा पीछे लेकर के चलता हूँ, दिखाता हूँ कि यहाँ हालत अभी कैसी है कि चल पाना मुश्किल, और इस स्थिति में भी यहाँ पहुँच करके लोगों को मदद पहुँचाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि ट्रक से आए और ट्रक से आकर के कैसे यहाँ लोगों को मदद देने का काम किया जा रहा है। ज़रा इस तस्वीर को दिखाते हैं, सामने देखिए यहाँ पर कैसे बोरे में से सामान निकाला जा रहा है, और बोरे से सामान निकाल करके ये लोग जो बचा हुआ सामान है वो सामान पहुँचा रहे हैं। तो इस तरह से जो रेस्क्यू का काम है वो काम आगे बढ़ाया जा रहा है, और इस काम को करने में जो हेमकुंड फाउंडेशन है उसके लोग आगे आए हैं। ये तमाम सारे जितने भी आप सिख लोगों को देख रहे हैं, ये सब उसी हेमकुंड फाउंडेशन के लोग हैं, और लगातार सुबह से लेकर रात तक इसी तरह से लोगों को मदद कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए उस घर में सामने जहाँ से सामान निकाला गया है, उस घर में किसी तरह सीढ़ी लगाई गई, सीढ़ी लगा करके ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ का सामान बच गया, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों जगह पे आप देखिए कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन छत पे जो कमरा था वहाँ थोड़े बहुत सामान बच गए हैं, जिसमें बर्तन है, घर का कुछ और सामान है, वो सब निकाला जा रहा है। और स्थिति ये है, आप लोग कब से हैं यहाँ पे?
5: दो दिन हो गए हमें।
4: दो दिन? आप लोग हेमकुंड साहिब से आए हैं?
5: हेमकुंड फाउंडेशन दिल्ली से।
4: दिल्ली से, तो वहाँ से आकर के यहाँ पे रिलीफ का काम, कितने लोग हैं आप लोग?
5: अभी हम लोग 20-22 लोग।
4: 20-22? और वहाँ से कुछ खाने पीने का भी सामान लेकर के?
5: एयर कार्गो में सारा सामान है।
4: एयर कार्गो
5: से? बिकॉज़ रोड से डिफिकल्टी होती है ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, सो एयर कार्गो से सारा सामान।
4: तो एयर कार्गो से राहत का सामान आया, और उसके बाद ये लोग वॉलंटियर्स के तौर पर यहाँ पहुँचे, और देखिए किस तरह से चेहरे पर मुस्कुराहट है तमाम सारी मुश्किलों के बावजूद भी, और ये सारे लोगों को मदद पहुँचा रहे हैं, ताकि जो उनकी ज़िंदगी में मुश्किल है उस मुश्किल के बीच में उनके घर का जो थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ है वो थोड़ा बहुत सामान उन्हें मिले, तो शायद एक छोटी सी राहत उन्हें मुहैया कराई जा सके।
2: And with that, it's time for us to slip into a quick break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.
6: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.